0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

वाल है जो तू मेरे नाल है महाराज जी ता क्या मुछंदा मुछंदे का मतलब है मेनू मोहताज मैं किसे दा क्यों बना मैं किसे कोलों क्यों मंगा जो तू मेरे कोल है मैं तेरे कोलों ही मंगना मैं तेरे अगे हाथ अड्डने ने महाराज तुही दो मेनू है ना मोहताज नहीं मैं बनना दुनिया का इसे शब्द का बड़ा सुंदर जिक्र आता है जो महाराज नाल हुंदे ने फिर की हुंदा है।

ये जिहड़े शब्द ने लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, जिन्ना मर्जी खर्ची जाओगे जदों गुरु नाल आ गया रब नाल आ गया तुहानूं पैसे की कमी नहीं आनी। याद रखना, ये वेख लो फरमान है महाराज का, हुक्म है। लक्ष्मी तोट ना आवई, लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी दी तोट नहीं आती किन्हां नूं, जिहड़े मनुख अपने गुरु दे नाल प्रभु दे चरणां च बैठे हुए। खाए खर्च रहंदा, खर्ची जांदे ने खाई जांदे ने तां वी कमी नहीं आउंदी।

ये वैरी मित्र सब कीते हैं। वैरी महाराज जी जो नाल आ जान किसे नाल भी दुश्मनी ना रखना, सब नू अपना मित्र बना लो। सारे मेरे मित्र ने, किसे ना मेरा वैर विरोध नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं किसी ना। जे लड़ाइया हैगिया भी ने तां भी खत्म कर लो कि हुण महाराज जी दे नाल आ गए हाँ, महाराज दे चरणी आ गए हाँ। तो जिहड़े महाराज नू प्यारे ने तुहाडे सारे महाराज, तुहाडे ते सारी दुनिया प्यारी है ते साडे भी प्यारे ने, ना कोई वैर विरोध नहीं रखना। महाराज कहिंदे वैरी मित्र सब कीते हाँ, ना ही मंगे मंदा। मैं मंदा भी नहीं मंगना, ये नहीं वैर नहीं तो सड़ना भी नहीं कि तरक्की क्यों कर गया, ये मेरा भरा तरक्की क्यों, मेरी भैन तरक्की क्यों कर गया, मेरा ये क्यों तरक्की कर गया, वह भाई क्यों तरक्की कर गया, वह बंदा क्यों तरक्की, मेरा पड़ोसी क्यों तरक्की, सड़ना भी नहीं। ये चीज़ा याद रखने वाली ने, जो रब नाल जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह छंद। महाराज जो तुम मेरे नाल हो फिर मैनू की करना है, वह दस रहे ने महाराज जी।

कोई ना पूछे जा हर बख्शंदा। जदों हरी ने बख्श दिता, बख्शंदा मतलब हरी हरी कर लिया, गुरु दे कोल बैठ के कीता वाहेगुरु वाहेगुरु की है, हरी हरी करना, रब रब करना, वाहेगुरु वाहेगुरु करना, ईश्वर ईश्वर। जदों मारे कहते लेखा कोई ना पूछे, लेख पलट दिते मारे ने, लेख बदल दिते सारे मारे ने, नहीं लिखिया तो लिख के विखा दे, मैं रब तेनू ता मनना, मेरा मेरा विछड़िया गुरु मला दे, मैं रब तेनू ता मनना।

प्रभु भगवान दो जिक्र आए। इस पौड़ी दे अंदर पंचम पातशाही दा शब्द है। महाराज जी कहंदे ने आनंद पया सुख पाया। कदों आनंद आया, कदों सुख मिलिया, जा महाराज कहंदे मिल गुरु गोबिंदा। मैनू गुरु मिल गया ते मेरा भगवान मेरा प्रभु मिल गया, मेरा वाहिगुरु मिल गया। देखो उदो सुख मिलता है, उदो आनंद मिलता। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जो गुरु मिल जाता है आनंद।

सबे काज सवारी है। हुण इस पंक्ति ते महाराज कहिंदे ने सब काज सवर जांदे ने, जां तुद पावंदा जो तेनू पा गया, मैं तेरा बन जा तेनू मैं पा गया, सारे काज तू सवार के रख देने, सब कुछ ठीक कर देने। ते तुसी महाराज दे क्यों नहीं तुसी लड़न लगदे? कहो महाराज जी अहीं की लेना इधर उधर, जां तू मेरे वल है, तू मेरे वल है, मैनू किसे दी फिक्र नहीं।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8
5: FM। सुंदर स्त्री हीरा है लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

कीर्तन गा रहे हो तो सुन रहे हो अज जाना जो तुम घर च ना रहमत वेखना यो रहमत थोड़िया थोड़िया कट्ठिया होके बड़ा सुख दिंदियां ने बड़ी कृपा दे खुशियां मिलदियां ने इन्हां रहमतां तों भोरा भोरा रहमत कट्ठी की जाती है भोरा भोरा पानी तिल तिल तिल तिल कर करके एडे एडे वड्डे भाग हो जाते हैं वड्डे भागी बंदा बन जाता बूंद बूंद ना समुंदर भरदा है।

उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें Sharda University के Sharda School of Media, Film and Entertainment Department में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने वाली बातें हम आपके साथ साझा करते हैं, और बहुत कुछ खास होता है इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। ये सारी बातें जन जन तक हम पहुंचा रहे होते हैं। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि आपको अपने शहर ग्रेटर नोएडा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कैसा लगता है। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे साथ हमारे टीचर जुड़ जाते हैं, वो टीचर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें तराश रहे होते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें वो हमसे साझा कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। पढ़ने पढ़ाने की जो बातें वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि BGMC की पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं, और उनका जो नाम है वो है प्रियंवदा। 2016 में इन्होंने यहाँ से कोर्स किया जिसका नाम है BGMC। तो प्रियंवदा, आपका फाइनली सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू सो मच सर।
4: कैसा फील करें, काफी टाइम के बाद आप अपने कैंपस में आए हैं और अपने स्कूल में आए हैं, अपने टीचर से आप मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
5: सर, स्कूल वापस आके तो अच्छा लगता ही है, टू मीट ऑल द ओल्ड टीचर्स हु बीन देयर। कुछ टीचर्स तो आई थिंक हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर, एंड बाकी जो टीचर्स यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद ऑल ऑफ देम, एंड आई यूज टू वर्क अ लॉट। प्रैक्टिकली 3 साल मैंने फैकल्टी रूम से ही अपनी पढ़ाई की।
4: ओह ग्रेट,
5: बिकॉज वहाँ पे आई यूज टू बी द एडिटर फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो, शार्दन्स की।
4: एक्सीलेंट,
5: तो मैं प्रैक्टिकली वहीं पे रहती थी।
4: मुझे यू कहें कि मैं बहुत चक्का क्यों रह गया, इसके पीछे एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको पता ही नहीं होता कि फैकल्टी रूम कहाँ है। मतलब आपने वहाँ अपनी कुर्सी जमा ली और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, तो क्या क्या सीखा उस दौरान आपने?
5: सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड वाज द कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, कि कुछ भी हो, जो भी काम हो, 100% वही उसी को करना है विद फुल फोकस।
4: ग्रेट,
5: एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यहाँ पे टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज वो आई थिंक सबसे बड़ी सीख होती है। अगर अपनी मिस्टेक्स से आप खुद सीख के आगे बढ़ो, तो जो 3 साल मैंने यहाँ पे सीखा है,
4: ओके,
5: वो माई टीचर्स हैव बीन माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट. इनफैक्ट ऑल माई टीचर्स, स्पेशली एक अभिषेक सर थे, अशरफ सर थे, इन्होंने ही मेरे को पुश किया था यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए.
4: ग्रेट. तो उनका एक्सपीरियंस कैसा?
5: उनके साथ सर सीखने को बहुत मिलता था. उनकी क्लासरूम ऐसे क्लासरूम नहीं लगती थी. इट यूज टू बी मोर लाइक सिटिंग, टॉकिंग टू हिम, वर्किंग विद हिम. वो साथ में काम करते थे बच्चों के साथ, एंड लाइक वहाँ से उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी. टू एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर जो क्लासरूम में होता है, तो लाइक आई थिंक फॉर मी वो बहुत अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस था.
4: अभिषेक सर से तो फोन पे बातचीत हो जाती
5: है? हाँ, अभिषेक सर से भी आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट उनके साथ, पर वो थोड़ा सा वो मतलब आप वो बहुत पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट कि अगर उनको पता है कि वॉट इज द केपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो कितना आगे जा सकता है, तो उनसे तो प्रैक्टिकली हमेशा डांट ही पड़ती रहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो.
4: अच्छा प्रेमदा, मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत कुछ आपने सीखा अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, मुंबई जब आप गए तो कितना काम आया? आपको लगा कि अगर काश मैं वहाँ ये सारी चीजें मिस कर देती तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करती. जो आपने सीखा यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से, कितना काम आया?
5: सब बहुत काम आया. इनफैक्ट मैं यहाँ पे जब मेरे को सेकंड ईयर में शारदंस का एडिटर बनने का मौका मिला था सेकंड ईयर से, सो मैं 2 years आई वाज द एडिटर हियर. मेरे को एक तो टाइमलाइन, हाउ टू वर्क विद इन अ टाइम लिमिट, एंड स्टार्टिंग जब मैंने एडिटर से की थी तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट एज अ राइटर किया था. एंड आई रोट स्क्रिप्ट फॉर टीवी शोज, नॉन फिक्शन टीवी शोज, एंड फिर मैं जब क्रिएटिव फील्ड में गई तो एक सर वो जो फाउंडेशन यहाँ बनी थी
4: वो वहाँ काम आया,
5: वो बहुत वहाँ काम आया. इनफैक्ट उसी पे बिल्ड हुआ है मेरा करियर.
4: एक्सीलेंट. ये आंसर में इसलिए जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर्न्स आते हैं, बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हैं, इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि वो उस चीज को सीखना या समझना नहीं चाहते. आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन इस मैसेज को मैं अभी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बात का संबंध आपकी बात से संबंध है. तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सीखें, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या एक मैसेज होगा?
5: मैं अगर वो मैसेज बताऊं सर, इट इज एक्चुअली कि शारदा में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. आपको जिस डायरेक्शन में सीखना है, जो सीखना है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव हियर, एंड टू द फैक्ट कि आप स्टार्ट करके यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन,
4: राइट,
5: कि आगे व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड यू कंटिन्यू योर करियर, इट रियली हेल्प्स. And you can fall back to your foundation anytime. Vapas aake, you can relearn everything from these teachers. They are that open to you as a student. As a pass out, I have passed out in 2016. But to start learning, but to come back to the roots and just talk to the teachers and learn, I think this is the thing. Because learning, I feel there is no age to
4: बिल्कुल,
5: learn.
4: बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जब चाहे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. और अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत होगी तो उस पर आप इमारत को खड़ा कर सकते हैं. और आपकी बेशक इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि आपकी जो नींव मजबूत रही अपने टीचर्स के सानिध्य में, आपने बहुत कुछ नाम कमाया है, कमा रही है. सो लिसनर्स, मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आप हैं प्रेमवदा. तो प्रेमवदा के साथ बहुत सारी बातें हो रही, ये परिचय मैं इसलिए बताना भूल गया, लगा अरे नहीं अपनी तो स्टूडेंट है. प्रेमवदा, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपके साथ जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम. मैं हूं गगन आपके साथ, मेरे साथ हैं प्रेमवदा जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं. सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 एफएम.

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM। मीडिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और कहा जाता है कि ये मजबूत स्तंभ है, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि शारदा विश्वविद्यालय आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो मास्कॉम है, यहाँ का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में यूँ कहें कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश में, मुंबई में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि प्रेमवदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि 2016 में यहाँ से पास आउट रही हैं। बीजेएमसी का कोर्स इन्होंने किया, इसके बाद मुंबई का सफर रहा, और उसके बाद जो मैं अभी थोड़ा ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, 2019 का रुख किया आपने विदेश की तरफ। ये फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना हुआ या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से जाना हुआ उधर?
1: 2019 में मैं गई थी जर्मनी फॉर अ वन ईयर कोर्स इन फिल्म मेकिंग। मैंने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके। सो एक साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, मेट फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है बर्लिन में, एंड वहाँ से आई हैव डन माय वन ईयर ऑफ मास्टर्स।
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दिया जाता है या थ्योरी पढ़ाई जाती है?
1: वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहता है। इनफैक्ट एज अ फिल्म स्टूडेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिल्म एज अ ऑडियंस ना देख के, एज अ स्टूडेंट देख के उस पर क्या अपनी क्रिटिक आप दे सकते हो, वो आपकी थॉट बिल्डिंग करवाते हैं वहाँ पे। कि एक फिल्म को अगर आप देख रहे हो नॉट एज एन ऑडियंस बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट, तो टेक्निकलिटीज पहचानने का और डिफ्रेंशिएट करने का आप में वो टैलेंट एंड वो स्किल वो लोग डेवलप वहाँ पे बहुत कराते हैं।
0: ग्रेट। उसके बाद फिर जो आप जर्नी रही, वो कैसी जर्नी रही वहाँ? मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल वहीं किए, वहीं काम किया, या उसके बाद बैक टू पवेलियन या हिंदुस्तान आना हुआ?
1: जब मैं बर्लिन में थी, इन 6 months इनटू माय कोर्स, वहाँ पे तो लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। तो फर्स्ट लॉकडाउन वाज वहाँ पे नोबडी न्यू कि क्या है, कैसे है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा। सो कपल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलके, इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है यहीं शारदा का, वो भी वहाँ पे था, हम दोनों ने मिलके एक फिल्म बनाई। एंड प्रैक्टिकल वी थॉट कि जो हमने अभी तक सीखा है 6 महीने में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे टीचर्स से डिस्कस करना उतनी नॉलेज वो कि हम ये फिल्म शूट करना चाहते हैं। सो वो सारा लेके वी मेड एक्सपेरिमेंटेड विद अ शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म है, इट इज ऑन लाइक 1 take में हमने पूरी शूट करी है, एंड इट इज कॉल्ड कोल मीट। वो लेके भी टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव। जब हमने फिल्म उनको प्रेजेंट करी तो उन्हीं का आइडिया था कि अब इस फिल्म को लेके तुम थोड़ा फिल्म मार्केट एक्सप्लोर करो और सीखो। तो वो भी वहां पे बैठ के किया था कि हम लोग ने फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म डाली, फिर सीखा कि कौन सी मार्केट में कैसी फिल्म चलती है, क्या होता है।
0: तो किस लेवल पर वो फिल्म गई आपकी?
1: वो फिल्म US में हैज वन अवार्ड्स एज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर प्रोड्यूसर आल्सो इंडी फिल्म फेस्टिवल्स में इन लॉस एंजलिस। इंडिया में भी 2 फिल्म फेस्टिवल्स, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म हैज been selected and has won award.
0: Oh, great. बधाई हो। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत सादगी से बातें अपनी रख रहे हैं, अदरवाइज तो लोग ये कहते हैं कि आसमान में उड़ रहे होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास की मैं बात करूँ, इस एरिया में दिल्ली NCR में भी फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं। ग्रेटर नोएडा के अलावा मैं बात करूँ, नोएडा में भी फिल्म फेस्टिवल है और आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी आ रही है, तो क्या कभी कोई यहाँ अपनी फिल्म को लेकर आप आगे गए, एक बात, और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो फिल्म सिटी आ रही है कितना स्कोप होगा स्टूडेंट्स के लिए? 2 बातें।
1: सर, ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल सर्किट में चल ही रही है। मैंने इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि माय एम वाज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिल्म मार्केट। इंडिया का तो लाइक बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग अ स्टूडेंट हियर वर्किंग इन बॉम्बे, थोड़ा बहुत आइडिया तो अंडरस्टैंडिंग फिल्म मार्केट की थी, बट बाहर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए दिस फिल्म पर्पस वाज दैट। अब आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल सर्किट नेक्स्ट ईयर फिर ये फिल्म हम लोग यहाँ पे नोएडा दिल्ली में थोड़ा उसको वो करेंगे
0: एक्सप्लोर करेंगे
1: एंड इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द बेसिकली प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन जो हम पेपर पे सीखते हैं और जो हम फिल्म सेट पे सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है एक फिल्म एटिकेट होती है जो सेट पे
0: राइट
1: एज अ प्रोफेशनल जब आप स्टेप इन करते हो फिल्म सेट पे वो आई थिंक क्लासरूम के बियॉन्ड एक लर्निंग है
0: बिल्कुल सही का
1: वो आप यहाँ पे ऑन पेपर विद टीचर्स जितना सीख सकते हो बट वेन यू स्टेप इन टू दैट फिल्म सेट और वेन यू स्टेप इन टू लाइक इन अ प्रोफेशनल फील्ड वो आई थिंक स्टूडेंट्स विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाएगी इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो मतलब सबको बॉम्बे नहीं भागना पड़ेगा
0: दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ से पास आउट हो रहे हैं अभी आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ दी है प्रेमवदा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप फील्ड में उतरते हैं मैदान में उतरते हैं डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या कुछ और उस समय बहुत सारी चीजें काम आती हैं कि नो डाउट जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ से सीख कर गई थी तो मुंबई में मुझे वो सारी चीजें काम आई कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि अपने समय को खराब कर रहे होते हैं 3 साल या 4 साल व्हाटएवर जो भी है उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पका पकाया मिल जाए एक तो धैर्य की कमी होती है दूसरा ये भी होता है कि वो सुनना पसंद नहीं करते अगर टीचर जाहिर सी बात है टीचर के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते फिर वो डायरेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की कैसे सुनेंगे अगर वो सारी चीजें यूं कहें कि जो आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं तमीज की बात कर रहे हैं अगर किसी विद्यार्थी में वो सारी चीजें हैं सुनने की क्षमता है सीखना चाहता है टाइम स्पेंड करना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा और जिस विद्यार्थी के पास ये सारी चीजें नहीं है क्या कहना चाहेंगे
1: अभी भी टाइम है
0: सीखने को
1: बट वहां पे जाके आपको कोई दोबारा अगर आपने गलती करी कोई बैठ के समझाएगा
0: नहीं समझाएगा राइट
1: ये एक चीज है वहां पे अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी विद वन मिस्टेक
0: किसी को मतलब नहीं है आपसे राइट
1: तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे आप अपनी मिस्टेक जहां तक आप जब तक रियलाइज करोगे फिर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन वो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है
0: क्या कहना चाहेंगे शारदा यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में काफी समय के बाद आप आए हैं रेडियो स्टेशन उस वक्त आपका आपके सामने बन रहा था और आज आप रेडियो स्टेशन में है एक और आपका एक साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ सो कैसा फील करते हैं अपनी कॉलेज में आकर रेडियो स्टेशन में आकर क्या कहना चाहेंगे फाइनली
1: एक्चुअली सर आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जहाँ पे मतलब व्हेन हम लोग थे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एम्फेसिस ऑन अ फिल्म स्कूल ऑन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था एंड नाउ अब आके देख रही हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई हैं सो आई फील लाइक कि एज स्टूडेंट्स वी मिस्ड आउट ऑन दैट हम लोगों को हर चीज के लिए वी वर लाइक अपने से वो करते थे
0: जी जी
1: बट नाउ यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देख के फॉर स्टूडेंट्स आई फील रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड
0: रियली नाइस सो मैं भी यही कहूंगा आपकी बात का एक निष्कर्ष निकालते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं समझ रहे हैं इस अवसर का उनको फायदा उठाना चाहिए लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं या फ्रीलांस अपना कुछ काम करना चाहते हैं जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है जिंदगी शायद वो दोबारा आपको सीखने का मौका ना दे और अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो धैर्य पेशेंस होना बहुत जरूरी है पैशन के साथ आपने उस पेशेंस को जब आप कैरी करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा परिणाम जो आएगा वो सुखद आएगा सो प्रेमवदा मुझे आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई बहुत अच्छा लगा और खास बात ये अच्छी लगी कि जो आपने कहा वो मैंने पाया आपकी सादगी में और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ और सब कुछ अच्छा हो बेहतर हो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: थैंक यू सो मच सर
0: सो लिसनर्स आप थे हमारे साथ प्रेमवदा जो कि एक प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं राइटर हैं ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM मैं हूं गगन मुझे दीजिए अनुमति जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है प्यार के साथ मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए ना टेंशन लेने की जरूरत ना किसी को टेंशन देने की जरूरत टाटा बाय बाय एंड टेक केयर
2: प्ले क्या बात है

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
0: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
1: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं। जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सब की साफ सफाई करते हैं।
2: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते दीदी।
0: बहुत बढ़िया।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:03 हो चुके हैं, 29 तारीख है यानी कि मंगलवार का दिन, और बजरंग बली से यही प्रार्थना कि सबका मंगल ही मंगल हो, कभी किसी का मंगल ना हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचे, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शादा 90.8 FM पर, कभी रूहानी कभी रुमानी, फ्रॉम द मूवी राजा नटवरलाल, बेनी दयाल की आवाज।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और हमेशा बजरंगबली से अर्थात मंगलवार का दिन बजरंगबली से यही प्रार्थना कि सबका मंगल ही मंगल हो। इसके लिए जरूरी है कि आप सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। समवन इज वेटिंग फॉर यू। जब मैं सुरक्षित चलने की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है कि बात होती है यातायात के नियम कदम कानून की। शारदा विश्वविद्यालय के आगे, शारदा विश्वविद्यालय के अलावा शारदा अस्पताल के आगे अक्सर हमने यहां देखा है कि जाम के जाम से लोग परेशान हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जाम की स्थिति बनेगी नहीं जब आप अननेसेसरी ओवरटेक ना करें, एक लेन में आप चलें, अनावश्यक हॉर्न ना बजाएं, ओवरटेक ना करें, गलत दिशा में गाड़ी को लेकर ना आए, तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। लेकिन हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि शारदा अस्पताल के आगे एम्बुलेंस भी आ जा रही होती हैं, तो सबसे पहले उनको रास्ता दें ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। तो बस सुरक्षित चलिए और यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए अपने गंतव्य स्थान पर यथा समय पहुंचिए। चलिए 29 सितंबर यानी कि आज है आखिरी दिन। 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक नोएडा एक्सपो ट्रेड फेयर यहां पर आयोजित किया गया और आज आखिरी दिन। जाहिर सी बात है कि लोग अपने अपने घर जाएंगे, घर वापसी करेंगे तो ट्रैफिक की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन नो एंट्री यानी कि सुबह 7 से लेकर रात के 11 बजे तक जो भारी व्हीकल है उनके लिए नो एंट्री रहेगी। और जाम की स्थिति यानी कि वीवीआईपी मूवमेंट भी होगा, लोग आएंगे जाएंगे, तो बहुत सोचकर समझकर शाम के वक्त में निकलेगा। 9971009001 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर पर। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता नजर आ रहा है, लेकिन आज की धूप खिली खिली नजर आ रही है और जिसकी वजह से आपके चेहरे पर भी मुस्कान खिली खिली नजर आ रही है। आज क्या है, कौन सा दिन है, दिल में कोई रहता है, इसके बारे में बातें करेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ 9:13 मिनट 29 तारीख मंगलवार। गुड मॉर्निंग।

0: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
1: माँ जी, मुझे टीबी है।
0: टीबी? और छुपा कर रखा?
1: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
0: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें।
2: टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद।
1: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
0: खाने में 1 चम्मच घी या तेल है जरूरी,
1: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
0: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
1: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
5: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले, तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
4: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
6: इसी तरीके के जन संदेश को सुनने के लिए आप सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सुर उठाता 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार, 22 मिनट हो चुके हैं, 29 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास, उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। दिल का क्या करें साहेब,
7: इस दिल की धड़कन में तुम रहते हो। दिल तो दिल है, दिल दिल इबादत कर रहा है।
6: ये क्या है,
7: मुझे लगा अंताक्षरी शुरू करनी है, मैं बिना जाने सोचे समझे शुरू हो गया।
6: चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसना मुस्कुराना, नींद लेना बहुत जरूरी है, तनाव से अपने आप को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका दिल तंदुरुस्त रहे, आपकी धड़कनें चलती रहें, आप दौड़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपने दिक्कतें परेशानियां अपने आसपास रख ली, आपने बैलेंस डाइट नहीं ली, नींद नहीं ली, तनाव को अपने आसपास परपने दिया, या व्यसनों से दूरी नहीं बनाई, व्यसनों बोले तो धूम्रपान शराब का सेवन अगर आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धमनियों को ब्लॉक करता है ये सारी चीजें, स्मोकिंग, शराब। और नियमित जांच, यानी कि 40 वर्ष की उम्र के बाद डायबिटीज, हाई बीपी होने पर नियमित रूप से ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। जाहिर सी बात है कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि इस दिल का हम ख्याल रखें, क्योंकि इस दिल में कोई बसता है जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आपकी फैमिली यहां रहती है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप चाहते हैं कि लंबी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों से दूर रखना होगा, अपने दिल का ख्याल रखना होगा, अपनी लाइफ का ख्याल रखना होगा, हाँ अपनी वाइफ का ख्याल रखना होगा। ये भी सही था, गुड मॉर्निंग, शाबाश। ये गाना तो बनता है ना, दिल इबादत कर रहा है, फ्रॉम द मूवी तुम मिले। केके की आवाज, केके की आवाज वाकई दिल में उतरती है। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल यू ऑन सुरशादा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। अपने दिल का ख्याल रखिएगा, गुड मॉर्निंग।

0: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: बिल्कुल आपने सही सुना कि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात ये धरा ये पृथ्वी एक परिवार है और इस परिवार में वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी, इसलिए कहा जाता है कि हम यहाँ हैं तुम कहाँ हो, है ना। चलिए पढ़ने पढ़ाने की बातें कर लेते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें कर लेते हैं, एनटीए के बारे में। हाँ नाम तो सुना ही होगा। हाँ यहाँ फिल्मी डायलॉग मार दिया बहादुर ने, नाम तो सुना ही होगा। अभी हाल फिलहाल में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसके बारे में एनटीए उसमें सेंटर पॉइंट था और सेंटर में रहने के बाद अब यूँ समझ लीजिए कि एनटीए कुछ ऐसा करने जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एनटीए का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, और इसके अंतर्गत बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, 3-4 जी मेन होता है, नीट, यूजी, सीयूईटी, यूजीसी, नेट, इस तरीके की परीक्षाएं एनटीए कराता है। अब सुनने में आ रहा है कि नीले कड़ी जो कि पूर्व इसरो के हेड हैं इनकी देखरेख में अब पैटर्न 2027 में बदलने जा रहा है। एक बात तो ये सच है कि जो समय गुजर रहा है वो समझ लीजिए कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें टफ आपके सामने होने वाली हैं, कुछ खास होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। अभी धांधली को रोकने के लिए जो पेपर पैन मोड पर परीक्षाएं दी जाती थी सीबीटी के जरिए, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड तैयारियाँ हो रही हैं कि टेस्ट उसके जरिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर वो जगह लेगा पेन पेपर की जगह, और साल में कई बार परीक्षा और 12वीं के मार्क्स को वेटेज मिले, इस मामले में जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है और एआई की नजर रहेगी, यानी कि हाई टेक सुरक्षा व्यवस्था, फेस ऑथेंटिकेशन, यानी कि एआई भी इसमें जगह लेगा और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी। नीट 2027 का ये कुछ अपडेट थी तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया,
3: हाँ ये भी सही है। शाबाश बेटा, मन लगा के पढ़ो, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन नकल को दरकिनार करो, सही है।
2: बहुत

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो

जाप करते हुए अंगूठी की ओर से पितरों को जल तर्पण अर्पित करें। यानी कि जब इस चीज को मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि विधि विधान का बहुत खास महत्व होता है, सामग्री का महत्व है, अपने बड़े बुजुर्गों को आप याद कर रहे हैं, उनको भोजन की जो प्रक्रिया है उसको आप पूरी कर रहे हैं, धार्मिक जो मान्यता है उनका आप पालन कर रहे हैं। मुझे एक बात ये समझ में आती है कि मुझे लगा कि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आज वो साक्षात आपके आसपास हैं, है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूछते हैं, जैसे अक्सर हमने अपने घरों में देखा है कि बेटे कहाँ रह गए, कब तक आओगे, कितने बजे तक आओगे, बच्चा परेशान हो जाता है। फिर उसको शायद हम समझाते हैं कि देखो भाई माँ तो कहना नहीं आ रही, अगर पिताजी आपसे पूछ रहे हैं तो आप बड़े कहते हैं ना खुश नसीब है, नसीब आपका बहुत अच्छा है कि कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई आपके बारे में खैरियत पूछ रहे हैं। आप उनको डांटिए मत, चिल्लाइए मत, उनसे प्यार से बात करिए, उनका ख्याल रखिए, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि बहुत सारी दिली दुआएं शुभकामनाएं आपको मिलेंगी और आपके काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स आपका कभी अहित नहीं चाहते, वो हमेशा आपका हित ही चाहते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को सरल सुगम आसान बनाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9 to 11। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। अक्सर लोग कहते हैं कि ना टेंशन लेने का, टेंशन देने का, लेकिन अपन बोल ले ला अरे क्या हो गया गगन। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं फ्लो में चला गया। तो खैर, मैं यही कह रहा हूँ कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति को टेंशन देने की आवश्यकता। आप खुश रहिए, एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखिए और दूसरों को भी खुशियाँ दीजिए। देखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपका दिल तंदुरुस्त रहेगा। और अपने दिल को तंदुरुस्त बनाने के लिए अच्छा खान पान, अच्छी सोच, अच्छी निंद्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज है वर्ल्ड हार्ट डे। इस दिन को बड़े धूमधाम से सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। शारदा विश्वविद्यालय में, शारदा अस्पताल के आंगन में, प्रीमिसेस में भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शारदा अस्पताल में आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए और उस हेल्थ कैंप का आप जरूर लाभ उठाएगा। इस दिल में कोई बसता है वो है आपकी फैमिली, तो अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो। कोई नहीं चाहता कि कोई दिल का रोग लगा कर बैठे सिवाय प्रेम के।
1: अजी शाबाश मेरे लाल, तुम बहुत आगे जाने वाले हो, गुड जॉब।
0: मतबल?
1: अजी मतबल नहीं होता, मेरे साथ रह के तुम्हारी भी जबान खराब हो गई, मतलब होता है।
0: हाँ मतलब?
1: उज्बेकिस्तान, देयर इज अनदर वन शाखा फ्रॉम शारदा विश्वविद्यालय।
0: आई करेक्ट यू, उज्बेकिस्तान।
1: मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हें जानकारी है या नहीं।
0: कुल मिलाकर अपने दिल का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब दिल का ख्याल रखते हैं तो कोई अगर बिछड़ गया है, किसी को अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पिया मिलेंगे। राजना फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक, सुखविंदर सिंह की आवाज, सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद जाना पहचाना प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई। अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज, सभी लोग ध्यान दे। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर। अरे ये HPV क्या होता है भाई और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सियातिया सिंह जी इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये सब क्या चल रहा है?
1: अरे आरजे बाबू परेशान मत होइए, आज बहुत अच्छा और बड़ा दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ
0: जी।
1: गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की 12 साल की बेटी थी गुड़िया, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा लिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए, उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। बस उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहें? अगले दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थीं। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए भैया ऐसे। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बातें हैं लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: सियातिया भैया कहानी तो आपने बहुत ही अच्छी सुनाई है लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से बताइए हमारे सुनने वालों को ताकि उनकी समझ में आसानी से ये बात बैठ जाए।
1: बिल्कुल बेशक। देखिए HPV का मतलब है ह्यूमन पेमिलोमा वायरस, नाम बड़ा लग रहा है होगा आपको
0: जी,
1: लेकिन पूरा मतलब इसका यही है, HPV का ह्यूमन पेमिलोमा वायरस। पर बात आसान है, ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका न जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: तो सियातिया भैया इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हुआ कि ये जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
1: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं आरजे बाबू?
0: वो क्या है सेतिया भैया, अब तो आप थोड़ा डरा भी रहे हैं सबको।
1: मैं डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता। ना कोई दर्द, ना कोई बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है।
0: मतलब आपका ये है कि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: ये तो बहुत खतरनाक बात है, तो फिर इससे बचने का कोई ना कोई तरीका तो होगा या नहीं है?
1: यही तो अच्छी खबर है आरजे बाबू। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
1: HPV वैक्सीन से एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
0: तो सेतिया भैया, जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनकी समझ में भी आसानी से आ सके ये सब बातें।
1: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: अरे सेतिया भैया, खेत के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि कोई जंगली जानवर है या अन्य जानवर है खेतों में घुस करके फसल को खराब ना कर दे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
0: ओहो, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
1: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आ जाए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
0: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है क्या इसके लगवाने की?
1: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आम तौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
0: लेकिन सेहतिया भैया, मान लीजिए अगर कोई इससे बड़ी उम्र की लड़की हो, उसके लिए क्या फिर करना चाहिए?
1: देखिए भाई, तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर रहेगा।
0: बिल्कुल, ये सब बातें सेहतिया जी तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक बात और आ रही है कि ये जो टीका है वो लड़कियों का टीका है, यानी कि उनको लगवाया जाता है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
1: सवाल बहुत अच्छा आप कर रहे हैं भाई, यही तो सबसे अहम बात है। आरजे बाबू, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
0: तो सेहतिया भैया, जो आप बता रहे हैं इस बात को जरा विस्तार से बताइए।
1: चलिए विस्तार से बात करते हैं, यानी कि डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
0: बिल्कुल सही बातें कही हैं सेतिया भैया आपने।
1: देखिए भाई, ये एक दूसरे से सीखते हुए हम बातें रख पा रहे हैं आपके सामने और एक रिसर्च के आधार पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात सामने ये आती है कि अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा तो ध्यान नहीं दे पाएगा वो अपने परिवार पर, माँ बहन पर, बेटी पर, तो आधी लड़ाई वहीं वो हार जाएंगे। इसलिए पुरुषों की भी भागीदारी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त।
0: तो सेहतिया भैया, आपके कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पूरे जोश के साथ मैं इस बात को डिनाई करता हूँ, इनकार करता हूँ। ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
0: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर वे माँ नहीं बन पाएंगी, माँ बनने में दिक्कत होगी।
1: देखिए आरजे बाबू, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं, अफवाहें।
0: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
0: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
1: भाई वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचने के लिए होता है और कुछ नहीं।
0: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की फिर क्या जरूरत है?
1: देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे बाबू, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सियाते जी, एक बात और बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
1: हाँ हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं भाई, और आगे भी आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसी कुछ रानी जैसे केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहां रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई और लोगों को समझाने लगे। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी मां से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जब जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन उन्हें देखना नहीं पड़ता। इलाज शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द, रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत कुछ बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते हुए।
0: सियाते भैया, ये तो आपने बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाई रानी की, लेकिन जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उनको क्या करना चाहिए?
1: देखिए साहब, उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
1: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाव, बेटी का टीका परिवार का भविष्य सुरक्षित बचाव। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। फिलहाल के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपके शहर ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और आज कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हम बात करेंगे HPV वैक्सीनेशन की, इस अभियान की। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार श्रीवा जी। आप डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, साथ ही साथ आप ACMO भी हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के। तो सर, सबसे पहले HPV को समझना चाहेंगे, ये क्या है?
2: ये एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है जो कि हमारा जो यूट्रस होता है उसके शुरुआत के हिस्से पे होती है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, इसलिए इसे सर्वाइकल कैंसर भी कहा जाता है।
0: अब बात आती है कि इसका जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो कैसे फैलता है?
2: इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं उनके संपर्क में आने से फैलता है।
0: जो HPV वैक्सीनेशन, वो क्या अभियान है?
2: देखिए, HPV वैक्सीन ये एक नया अभियान है जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान अजमेर से इसकी शुरुआत की गई थी।
0: अब जैसे आपने बताया कि राजस्थान के जिला अजमेर से इस अभियान की शुरुआत हो गई, तो HPV जो वैक्सीनेशन है वो किस तरह से अपने जिले में किया जा रहा है?
2: 45 जिले ऐसे थे जहाँ पे पहले से ही MR अभियान चालू था। हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर भी MR अभियान चल रहा था। उसके बाद अब हम इस अभियान को अपने यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। HPV वैक्सीनेशन की जो ट्रेनिंग्स हैं हमारे जिले में चालू हो चुकी हैं, जहाँ पर सभी ब्लॉक के चिकित्सा अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा वहाँ के अन्य कर्मी जिनका अहम रोल इस अभियान में होना है तथा जो हमारे बेसलाइन वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
0: तो ये तो बात रही कि क्या कुछ इस अभियान के अंतर्गत आप तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या इस अभियान के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है?
2: हाँ बिल्कुल, जागरूकता अभियान जो है हमारे सभी अर्बन PSC और CSCs के तहत जितने हमारे बेसलाइन कर्मचारी हैं जैसे आशा, ANM, आंगनवाड़ीज, इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इनके द्वारा एक सर्वे भी किया जा रहा है, क्योंकि जो टारगेट पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1% ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र 14 वर्ष होगी, उसका सर्वे किया जा रहा है।
0: इस HPV वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति आपके द्वारा बनाई जा रही है?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमें यही पता होना आवश्यक है कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन कितनी हो रहेगी, कितनी उम्र के बच्चों को हम लगाएंगे, किस किस को हम लगाएंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है तथा किस किस को नहीं लगाया जाना है ये हमें अपनी टीम को बताना बड़ा आवश्यक है तथा कहाँ कहाँ हमें टीकाकरण कराना है ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसी फैसिलिटीज को ट्रेनिंग दी दी जा रही है।
0: ये तो बात रही कि जो इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपके द्वारा जो रणनीतियां तैयार की जा रही हैं उसके बारे में। अब बात आती है सर कि इस HPV वैक्सीनेशन में कौन सी वैक्सीन लगाई जाए।
2: देखिए, हमारे इस अभियान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गार्डेसिल 4 वैक्सीन को चुना गया है, जिसके अंदर 4 क्वाड्रोवेलेंट होते हैं, 6, 11, 16 और 18। हमारे देश में यह देखा गया है कि 16 और 18 से ही इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए इस वैक्सीन को चुना गया है। यह सिंगल डोज वैक्सीन है, वायल मिलेगी और एक ही डोज लगेगी। ये लाभार्थी के लेफ्ट ऊपरी हिस्से पर लगाई जाएगी और मसल्स के अंदर ये टीका लगेगा।
0: तो अपने जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो HPV जो वैक्सीनेशन है वो कहाँ कहाँ पर होगा।
2: देखिए, इसके लिए ऐसी संस्थाओं को चुनना है जहाँ पर 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, डॉक्टर्स अवेलेबल हों। तो ऐसी हमारी 9 जगह हमने चुनी है। सबसे पहले हमने लिया है अपना जिला अस्पताल, उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स और PGICH, जहाँ पर 24 घंटे सेवाएं दी जाती हैं, तथा जो रूरल एरियाज हैं वहाँ हमारी 4 CSC हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन्हें लिया है जहाँ पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं इस प्रकार से। और 2 हमारी अर्बन CSCs हैं, एक बादलपुर में और एक भंगेल में। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 9 जगह चुनी गई हैं जिन पर टीकाकरण चालू होगा।
0: सर, HPV वैक्सीनेशन अभियान में जो हमारी आशा बहनें या ANM NG आंगनबाड़ी इनका भी कुछ योगदान रहेगा।
2: हाँ बिल्कुल, देखिए इन लोगों के बिना तो हमारा कोई भी अभियान सफल हो ही नहीं सकता है। देखिए, एक टीम के साथ 4 सदस्य होंगे, एक पहला टीकाकर्मी, एक दूसरा जो बच्चियां आएंगी उनकी एज वेरीफाई करने के लिए, तथा एक कंसेंट को वेरीफाई करने के लिए एक वेरीफायर की आवश्यकता होगी, इसके अलावा एक मोबिलाइजर की और एक वॉलेंटियर। इसमें हमारी आशा बहन जी, आंगनवाड़ी, कुछ वॉलेंटियर्स, स्टाफ नर्स और हमारी ANM, सभी का अहम योगदान रहेगा।
0: बिल्कुल सर, अब जिन लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा उन तक सूचना कैसे पहुंचाई जाएगी।
2: देखिए, जिस प्रकार से हमारा कोविड वैक्सीनेशन हुआ था, पहले रजिस्ट्रेशन करते थे तो UWIN पोर्टल है, उस पर आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप रजिस्टर कर देंगे तो उस पे डेट वगैरह सब आ जाएगी, आप उस नियत स्थान पर पहुंच करके टीका लगवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता या करना नहीं आता है तो भी हमारे 9 सेंटर्स में से जो भी उनके नजदीक होगा वहां पर पहुंचकर अपना एज प्रूफ दिखाना होगा, और जिस बच्ची का 14वां बर्थडे मनाया जा चुका होगा लेकिन 15वां बर्थडे अभी उसने नहीं मनाया होगा, उसको देखते हुए उन्हें रजिस्टर कर लिया जाएगा और अपने माँ बाप के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे कि हमें कंसेंट मिल सके कि वो अपनी बच्ची को ये HPV वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। और अगर मोबाइल नहीं होगा तो इसके लिए सरकार की तरफ से ये भी व्यवस्था रहेगी कि वो लिखित में भी अपना कंसेंट दे, लेकिन माँ या पिताजी को इस सेंटर पर आना होगा।
0: सर, कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो के माध्यम से आप हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे।
2: देखिए, रेडियो ये बहुत पुराना और बहुत अच्छा साधन है। रेडियो के द्वारा सभी तक बहुत ही आसानी से सारे हमारे जितने मैसेजेस हैं वो पहुंचते हैं, और HPV वैक्सीनेशन एक अहम वैक्सीनेशन होने वाला है, क्योंकि हेपेटोपेपिलोमा वायरस के द्वारा या सर्वाइकल कैंसर से लगभग 74,000 के करीब डेथ्स हो रही हैं और इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सभी 14 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण कराना आवश्यक है और सभी लगवाएं।
0: बिल्कुल सर, HPV वैक्सीनेशन के बारे में, इस अभियान के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने आज सुनो शारदा रेडियो के माध्यम से हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, उन तक पहुंचाई। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
1: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु,
0: धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले,
1: कुपोषित
0: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
1: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग।
0: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
8: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और जैसा कि आप जानते हैं, बताते रहते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य सही रहता है तो आपको लाभ ही लाभ होते हैं। आप अपने घर के काम अच्छी तरह से कर पाते हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं वो भी ढंग से कर पाते हैं और घर की आपको चिंता भी नहीं रहती है। तो बहुत से काम हमारे इस तरह से बनते हैं जब हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। और कई बार ऐसा होता है जो हमारे समुदाय के लोग हैं, कोई स्वास्थ्य परेशानी हो जाती है जिसमें कोई गंभीर बीमारी है तो इलाज कहाँ पे कराएं, महंगा इलाज होता है आसपास, लेकिन अपने खासकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम इन सब बातों की जानकारी करेंगे कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है खास करके कौन कौन सी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, जिनका के लाभ जो भी स्वास्थ्य का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और सरकार की बहुत सारी योजना भी हैं स्वास्थ्य की, तो उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में है मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर मदन मोहन मणि त्रिपाठी जी, उनसे हम सब बातें जानेंगे। सर, अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नोएडा का, तो कौन कौन सी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं लोगों के लिए?
2: हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पेडिया, ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और जो भी जैसे डिलीवरी के लिए लोग बाहर कहते हैं 50,000 लग गया, 20,000 लग गया, डिलीवरी में सारी सुविधाएं यहाँ पर मुफ्त हैं, सारी दवाएँ भी मुफ्त हैं और आपको डिलीवरी के बाद 1400 रुपया भी दिया जाता है। आई डिपार्टमेंट है यहाँ पर, चश्मे भी बनते हैं और दूसरी चीज़ आँखों की जांच होती है। नीचे जिला अस्पताल में ये है कि वैक्सीनेशन भी होता है बच्चों का, बहुत से लोग आते हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर मेडिसिन विभाग है, सर्जरी विभाग है, हार्निया, हाइड्रोसील, गाल ब्लैडर, अपेंडिक्स, ये सारे ऑपरेशन होते हैं। ENT है जिसमें सर्जरी होती है, टिम्पैनोप्लास्टी होती है, मायरिंगोप्लास्टी होती है, नेजल बोन सर्जरी होती है। बाकी यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, हमारे यहाँ NRC है, SNCU है, ये सारी सुविधाएँ जिला अस्पताल में मौजूद हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, हड्डी का ऑपरेशन भी होता है टूटने पर, तो ये सारी चीज़ें सुविधाएँ मौजूद हैं। लेकिन जनता को जानकारी के अभाव में सब प्राइवेट अस्पताल में, चाहे कुछ दलालों के चक्कर में लोग पढ़ के बाहर की सुविधाएं ले रहे हैं जो बहुत महंगी है।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने बताया बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऑपरेशन की सुविधा भी हैं, दांतों की बात करें तो हम हाइड्रोसील हर्निया की बात करेंगे, तो अपने यहाँ पर कितने सर्जन हैं जो इसका काम देखते हैं?
2: अभी 2 सर्जन हैं हमारे यहाँ काम देख रहे हैं, सारे ऑपरेशन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
1: जैसे हाइड्रोसील हो गया, हर्निया हो गया, वैरिकोसील लगा, तो कोई भी सर्जन कर सकता है तीनों का ऑपरेशन?
2: जनरल सर्जन कर सकते हैं, जनरल सर्जन। अब जैसे गुर्दे का ऑपरेशन हुआ तो उसमें यूरोलॉजिस्ट का काम है, जैसे हेड इंजरी हुई तो उसमें न्यूरो सर्जन का काम है, ये सब सुपर स्पेशलिटी है।
1: तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई, अक्सर जो हर्निया या हाइड्रोसील है लोग लोक लज्जा की वजह से भी इसके बारे में बात नहीं बता पाते और पता भी नहीं होता है उनको। और ज़रूर हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हाइड्रोसील, हर्निया, वेरिकोसील बड़ी आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा सर आपसे जानना चाहेंगे जो गर्भवती महिलाएँ खासकर जो प्रसव जिनका होता है तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएँ?
2: गर्भवती महिलाओं के लिए देखिए उनके लिए सारी सुविधाएँ गवर्नमेंट कर रही है। पहली चीज तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है कि जो भी गर्भवती माता हो उसको खून की कमी ना होने पाए, रक्ताल्पता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इनका 4 ANC होता है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, ये 4 ANC होता है और उसके बाद से उसमें इनका टीकाकरण भी होता है टिटनेस से, फिर उसके बाद से इनको आयरन, फोलिक एसिड दवाएँ दी जाती हैं। एक आशा उस क्षेत्र की इनके साथ हमेशा लगी रहती है, जब प्रसव का समय आता है उसके पहले भी अल्ट्रासाउंड करा लिया जाता है कि जैसे नाल उल है गले के अंदर तो नहीं फंस रही है, चाहे और कोई परेशानी है, उसके साथ हमेशा लगी रहती है। और जब डिलीवरी का समय आता है तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती करके, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं तो सीजेरियन प्रसव से बच्चा पैदा होते हैं।
1: बिल्कुल, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर जिनका प्रसव होता है। सुनो शारदा 90.8 FM से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: स्मार्ट की सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस का नहीं है, लेके जाओ घर पे।
2: नमस्ते दीदी।
1: तब आशा वाली दीदी आई तो बोली क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को, तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है, तो बोले कि लेके चलोगी सरकारी हॉस्पिटल पे, तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ, तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
3: ये दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में, उनको चार प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और भी विभाग हैं, जैसे पंचायती राज है जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं, कई अंतर विभागी जो सहयोग कर रहे हैं उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें, तो इस काफ़ी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प हैं उसका पानी लोग ना पिए, पानी से भी ये जल जनित बीमारियाँ हैं, ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो आईसी के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के समय में हमारे बहुत से किसान भाई प्रगतिशील किसान बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रगतिशील किसान कौन होते हैं, उनमें और हम में क्या फर्क होता है। तो किसान मित्रों, आपको बता दें कि प्रगतिशील किसान वो होता है जो पारंपरिक खेती के तरीकों से हटकर आधुनिक, वैज्ञानिक और नवीन तकनीकों जैसे AI, जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग को अपनाकर उपज और आय को बढ़ाता है, जिससे खेती में कम लागत में अधिक उत्पादन मिलता है और बेहतर मुनाफा होता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरकता और पर्यावरण को भी बचाता है। ऐसे किसान भाई नई फसलें जैसे मशरूम, ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं और मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आता है और वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। प्रगतिशील किसान भाई ड्रोन सेंसर इस्तेमाल करते हैं और साथ ही वो रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद, केंचुआ खाद और नीम तेल जैसे प्राकृतिक तरीकों का खेती में प्रयोग करते हैं। प्रगतिशील किसान भाई अनाज के साथ साथ फल, सब्जियां और मशरूम जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाते हैं और वो अपनी खेती में ड्रिप सिंचाई और फसल चक्र जैसी विधियों से उपज बढ़ाते हैं। प्रगतिशील किसान भाई पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा पैदावार प्राप्त करते हैं और ऐसे प्रगतिशील किसान खेती की लागत घटाकर और पैदावार बढ़ाकर सालाना लाखों रुपए कमाते हैं। तो किसान बहन भाइयों, आप समझ गए होंगे कि प्रगतिशील किसान भाई वो होता है जो खेती में लागत को कम करता है और उससे फायदा ज्यादा लेता है आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके। तो किसान बहन भाइयों, आपको भी अपनी खेती में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके खेती में जो लागत है उसको कम करें और उससे फायदा ज्यादा लें। और सरकार भी अनेक योजना चला रही है, उनका लाभ भी आप लीजिएगा। इसके लिए आप अपने नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां जाके संपर्क कर सकते हैं और आधुनिक कृषि के बारे में, तकनीकों के बारे में, यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनका उपयोग अपनी खेती में कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रगतिशील किसान भाइयों की, और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा सत्यवादी हरिश्चंद्र का और कलाकार हैं पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना।
1: किसका

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती से ये रागनी। किस्सा था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। किसान मित्रों, खेत से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर साल अगर आप खेत में एक ही फसल करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती चली जाती है, पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। लेकिन जब आप बदल बदल के हर साल फसल करते हैं तो खेत की मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उपजाऊ क्षमता है, वो बनी रहती है और फसल उत्पादन है वो आपको अच्छा मिलता है। लेकिन जब आप एक ही फसल हर साल करते रहते हैं तो खेत की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और फसल उत्पादन भी कम हो जाता है और फिर आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम कृषि विविधीकरण की बात करें तो पारंपरिक फसलों की बजाय विभिन्न प्रकार की उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे फल, सब्जी, औषधीय पौधे या फिर खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन जैसी गतिविधियों को अपनाना चाहिए। ये किसान भाइयों की आय बढ़ाने, जोखिम कम करने और मृदा स्वास्थ्य सुधारने और साल भर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। किसान मित्रों, कृषि विविधीकरण केवल एक फसल पर निर्भरता को कम कर कृषि को अधिक लचीला और लाभदायक बनाने की रणनीति है। फसल विविधीकरण में किसान भाई गेहूं, चावल जैसे एक ही फसल चक्र के बजाय दालें, तिलहन, बागवानी, फल सब्जी उगा सकते हैं। इसके अलावा खेती के साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मशरूम की खेती अपना सकते हैं। अब किसान मित्रों, आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि आखिर कृषि विविधीकरण की, फसल विविधीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इससे आपकी आय में वृद्धि होती है। कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर जब आप उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों को अपनाते हैं तो आपकी आय में भारी मुनाफा होता है। इसके अलावा यदि एक फसल खराब हो जाती है तो अन्य फसलें या जो अन्य गतिविधि है कृषि के साथ साथ जैसे पशुपालन आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही साल भर जो रोजगार का चक्र है वो चलता रहता है। खेती से तो आमदनी 3 महीने बाद 6 महीने बाद होती है, लेकिन खेती के साथ साथ आप कृषि विविधीकरण, फसल विविधीकरण अपनाते हैं तो पूरी साल आपको रोजगार मिलता रहता है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ आय होती रहती है और साथ ही मृदा और पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। एक ही फसल जैसे धान, गेहूं लगातार उगाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है और साथ ही फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है और कीटनाशकों की जरूरत कम हो जाती है। इसके साथ ही पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों की बजाय कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा, मक्का को अपना सकते हैं। इससे क्या होगा, जल संरक्षण होगा और इसके अलावा बाजार में उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के अनुसार फल, सब्जी और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, कृषि विविधीकरण या फसल विविधीकरण न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी आप किसान भाइयों के लिए एक बेहतर विकल्प है। ये पारंपरिक खेती से आधुनिक, टिकाऊ और लाभदायक खेती की ओर एक आवश्यक कदम है। तो किसान मित्रों, आप भी कृषि विविधीकरण, फसल विविधीकरण को अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। और अब किसान मित्रों, आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और रविंद्र खालोर। किस्सा रहेगा रूप बसंत का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और रविंद्र खालौर से ये रागनी, किस्सा था रूप बसंत का। किसान मित्रों, बुढ़ापा जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है जहां शरीर में शक्ति कम हो जाती है, काम इंसान कर नहीं पाता है, और फिर काम नहीं कर पाता है तो उसकी आमदनी भी कुछ नहीं होती है और खर्चा तो होता ही होता है। अब बुढ़ापे में दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आए, इसके लिए सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना चला रही है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देना है। ये योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी बचत खाता धारक के लिए खुली है जो आयकर दाता नहीं है। इस योजना में पात्र के योगदान के आधार पर 1,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन दी जाती है। पात्रता की बात करें तो 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए और इसके साथ ही उनके पास एक बचत बैंक खाता होना चाहिए। किसान मित्रों, इस योजना के अंतर्गत ग्राहक की मृत्यु के बाद पति पत्नी को समान पेंशन मिलती है और दोनों की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है। अब इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर के पंजीकृत अपने आप को करा सकते हैं और इसके लिए आपके पास एक बचत बैंक खाता नंबर, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, इनकी आपको आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप भी अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही अटल पेंशन योजना की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

ज्ञानेंद्र सरधाना द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं, सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
0: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: प्रेमी धर्म के साथियों राम राम।
1: सजनों दहेज की आग सुनो, सजनों दहेज की

पति ने एक कमरे में बंद करके मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दिया। दोस्तों

कोई ऐसी औषधि दिलवाओ जिससे मेरे शरीर की जलन कम हो जाए। मेहरबानो, किसी ने कहा है धूप छाए तो रंग है दुनिया की इस तस्वीर का, ये धूप छाए तो एक रंग है

0: दरोगा जी।
1: बेटी कहिए।
0: जब आपने मुझे धर्म की बेटी कह दिया,
1: अच्छा
0: तो आप एक काम कर लीजिए,
1: मैं तेरी पूरी सेवा करूंगा बेटी।
0: दरोगा जी, मेरे जो बदन में जलन है, या तो आप एक काम करिए कि मुझे ऐसा कोई जहर खिला दीजिए जिससे
1: ऐसा मत कहो बेटी,
0: कर जाए।
1: मैं तेरा हमदर्दी हूँ।
0: या फिर आप मुझे कोई ऐसी औषधि दीजिए कि जो मेरे जलन में थोड़ी ठंडक पड़ जाए।
1: बेटी ऐसी बात मत।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए, कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: पापा, पापा कहाँ गए? पापा सुनो तो।
6: हाँ हाँ आकांक्षा बेटी, मैं यहीं पे हूँ। क्या हुआ, बड़ी खुश नजर आ रही हो?
5: हाँ पापा, खुशी की तो बात है।
6: अच्छा, ऐसी क्या बात है बेटी जो इतना खुश हो तुम?
5: पापा आप तो जानते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन डेंटल में पूरी कर ली है और अब मुझे कांगड़ा के सबसे बड़े डॉक्टर आनंद को असिस्ट करने का मौका मिल रहा है। बस 2 साल उनके अंडर काम करूंगी ना पापा, उसके बाद फिर मैं अपना क्लिनिक खोलूंगी।
6: अरे वाह वाह वाह बेटी, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। मेरी बेटी तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। बेटी तुमने तो मेरा सर गर्व से और भी ऊंचा कर दिया है।
5: वो तो मैं हूँ पापा, वो तो मुझे पता है। पापा आप भी बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है?
6: अरे बेटी खुशी की तो बात है, मेरी बेटी अब अपना खुद का क्लिनिक खोलेगी और इसी खुशी के साथ साथ बेटी एक खुशी और है मेरे पास तेरे लिए।
5: आपके पास क्या पापा?
6: बेटी तेरे लिए बहुत अच्छा ऑफर है एक, बताऊं क्या?
5: क्या?
6: बेटी अगर तुम्हें शिमला में अपनी प्रैक्टिस करने का मौका मिले तो।
5: पापा इससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती, लेकिन ये मौका कैसे मिलेगा मैं कुछ समझी नहीं।
6: बेटी तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रिश्ता आया है, पालमपुर की एक बहुत ही अच्छी फैमिली है, लेकिन बेटी बात ये है कि वो रहते ना शिमला में है और लड़के का खुद का बिजनेस भी है, वो भी गारमेंट्स का, और बेटी मैंने पता किया है खानदान बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
5: पर पापा मैंने इतनी मेहनत की है मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट डिविजन लाने में और अब जब मेरा करियर शुरू होने वाला है तब आप शादी बीच में लेके आ रहे हो, कैसे पापा?
7: लेकिन बेटा शादी और करियर साथ साथ में भी तो चल सकता है और शिमला जैसी जगह में तो तुम प्रैक्टिस भी आराम से कर सकती हो और साथ ही तुम्हें वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। और अब तुम 25 की भी हो गई हो और शादी के लिए भी अब तुम्हारी उम्र हो गई है और बेटा हर चीज का टाइम होता है।
6: देखो कांशा बेटी, तुम बहुत ही समझदार हो और मैं जानता हूँ कि तुम शादी और करियर दोनों को एक साथ ही अच्छे से निभा सकती हो। मुझे पूरा यकीन है अपनी बेटी पर। तुम सोच लो फिर बताना, ठीक है बेटी?
5: ठीक है पापा।

0: अर्जुन आ गए तुम? क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो?
1: बनो मत, तुम्हें सब पता है।
0: क्या कह रहे हो अर्जुन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो?
1: चुप रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो।
0: अर्जुन लेकिन तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा।
1: मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो, कितनी साधारण सी शादी की है तुम लोगों ने। अरे कम से कम 4 स्टॉल ही लगवा देते, कोई ढंग का पहले से बुक करवा देते। नाक कटवा दी तुमने तो मेरे दोस्तों के सामने, और शगुन के नाम पे सिर्फ 25,000। अरे कम से कम हैसियत तो देख लेते मेरी। मैंने तुम्हारे पापा को पहले ही कहा था कि जो कुछ भी वो मुझे देंगे वो सब तुम्हारा है, पर नहीं।
0: लेकिन अर्जुन, दहेज के लिए तो तुम लोगों ने मना किया था, और हमने तो पहले ही तुम्हें बताया था कि हम दहेज नहीं दे सकते, और अब तुम एकदम से ये बातें कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: अरे चुप रहो,
0: हमारी शादी की आज पहली रात है और तुम मुझ पे हाथ उठा रहे हो।
1: अभी तक हाथ नहीं उठाया है, अगर ज्यादा जुबान चलाई तो हाथ उठने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।

0: अर्जुन, ये रहा तुम्हारा टिफिन। और सुनो, शाम को जल्दी आ जाना प्लीज।
1: तुम कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? ये मेरा घर है और मैं जब मर्जी आऊँगा।
0: अर्जुन, मुझे ऐसा लगा था कि शादी के प्रेशर की वजह से तुम्हारा मूड ऑफ होगा, लेकिन तुम अभी तक नाराज बैठे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ?

0: अरे आ गए तुम, कैसा रहा आज का दिन?
1: ये मेरा बैग पकड़ो और मेरे लिए खाना लेके आओ।
0: अर्जुन तुमने शराब पी रखी है, लेकिन तुम तो शराब पीते ही नहीं थे। तुमने मुझे शादी से पहले बताया था कि तुम तो शराब पीते ही नहीं हो, लेकिन आज तुम अचानक से शराब पी कर आए हो।
1: हाँ पी कर आया हूँ तो क्या, और रोज पी कर आऊंगा। तुम्हारे घर वालों के पैसे से पी के नहीं आया हूँ। तुम लोगों ने तो दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं दी और बात कर रही हो।
0: अर्जुन मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो सकते हो। तुम तो प्यार की बड़ी दुहाई देते थे, पिछले 6 महीनों से तुम्हारा यही रवैया है। मार पीट कर रहे हो, शराब पी के आते हो, मैं परेशान हो गई हूँ।
1: सोचा तो मैंने भी नहीं था कि महारानी यहाँ खाली हाथ आएगी। अब ये चुपचाप रोना बंद करो और मेरे लिए खाना लेके आओ।

0: ओह, तो मैडम यहाँ आराम से बैठकर खाना खा रही है और उनके पतिदेव दुनिया भर के धक्के खा रहे हैं। बहुत अच्छे, खाओ खाओ, आराम से जी भर के खाओ। और सुनो, ये आंसू बहाने की एक्टिंग अपने पापा के यहाँ करना, इसे साइड में रखो और मेरी बात सुनो। मुझे कल तक पैसे चाहिए और अपने पापा को अभी फोन करो और कहो कि अरेंज करें।
1: लेकिन अर्जुन, अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, वो कहाँ गए?
0: जुबान लड़ाती हो मुझसे? अभी सिर्फ थाली गिराई है, अगर कल तक पैसे नहीं आए तो दांत भी गिरा दूंगा, समझी?
1: और कितना नीचे गिरोगे अर्जुन, कितना नीचे गिरोगे?
0: बदतमीज, जुबान अभी भी चल रही है तुम्हारी?
1: नहीं अर्जुन, मत मारो, नहीं नहीं,
2: और जुबान चलाओ।

0: हेलो पापा।
1: हेलो आकांक्षा बेटी, कैसी हो तुम?
0: मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? माँ, चिंटू और बिन्नी कैसे हैं?
1: यहाँ सब ठीक है बेटी, बस तुम्हारी माँ को दिन रात तुम्हारी चिंता लगी रहती है।
0: जानती हूँ पापा।
1: हाँ बेटी, बेटी वहाँ हालात कैसे हैं?
0: वैसे ही है पापा, और मुझे नहीं लगता कभी ठीक हो पाएंगे।
1: बेटी तू बस एक बार कह दे, मैं तुझे अभी के अभी वहाँ से ले जाता हूँ।
0: नहीं पापा, अब यही मेरा घर है, मुझे यही रहना है।
1: क्यों बेटी? अरे जब हालात सुधरने वाले ही नहीं है तो ऐसे घुट घुट कर जीने से क्या फायदा?
0: मैं नहीं जानती पापा, मुझे नहीं पता। अच्छा पापा मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ आपको।

0: डॉक्टर।
1: हाँ कांशा।
0: मैं चाहती हूँ आप मेरी डोज और बढ़ा दीजिए।
1: आकांक्षा, ये फिर से तुम डोज बढ़ाने की बात कर रही हो, तुम्हें लगता है इससे कुछ होने वाला है?
0: मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के झगड़े से, मुझसे सहन नहीं हो रहा अब।
1: तो इसके लिए तुम्हें डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं है आकांक्षा, तुम्हें आगे बढ़कर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत है, और जब तक तुम अपने लिए नहीं बोलोगी तब तक तुम्हारी मदद कोई कर नहीं पाएगा। तो इसलिए उठो, चलो आगे बढ़ो और हिंसा को कहो नो, क्योंकि तुम एक डेंटिस्ट हो, अपना जीवन यापन कर सकती हो, तो तुम क्यों ऐसे जीवन जी रही हो जहाँ तुम्हें तुम्हारे अधिकार नहीं मिल रहे, जहाँ तुम्हारे साथ हर रोज हिंसा होती है, तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है। अब तुम्हें जागना होगा और ये समझना होगा कि अब वक्त आ गया है, तुम आगे बढ़ो और इस सब से बाहर निकलो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो और अपने आप को पहचानो। तुम सब कुछ कर सकती हो अगर तुम ठान लो। अपने आप को पहचानो आकांक्षा और हिंसा को कहो नो। और साथ ही जितनी भी महिलाएं इस वक्त हमें सुन रही हैं, मैं उनको भी जरूर कहूंगी कि जब तक आप खुद हिंसा को ना नहीं कहेंगी, जब तक आप खुद हिंसा को नो नहीं कहेंगी, तब तक इस प्रताड़ना से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आकांक्षा, तुम भी हिंसा को कहो नो।
0: डॉक्टर, आप ठीक कहती हैं। मैं अब और ये जुल्म नहीं सहूंगी। मैं इसके खिलाफ जरूर लड़ूंगी। मैं और अत्याचार नहीं सहूंगी। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस हिंसा रूपी बेड़ियों को तोड़ डालूंगी। मैं अभी जाकर अपने ऊपर हो रही हिंसा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है।

0: अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं, आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अधिक दर्द का सामना करती हैं।
1: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है।
0: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं।
1: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं।
0: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार, लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप? हम तो भाई अच्छे हैं और आपसे बात करके और भी अच्छे हो जाते हैं। बस आपसे बात करने में हमारा मन लगता है। आपसे बात करते करते हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता और कई बार तो ये लगता है कि समय हो गया है लेकिन अभी हमारी बात तो पूरी हुई नहीं। तो आज हम आपके लिए ढेर सारा समय लेकर आए हैं और लेकर आए हैं आपके लिए एक कविता जिसका नाम है झूला। यह कविता आप पहले भी सुन चुके हैं लेकिन हमारा तो मन भरा ही नहीं। मन करता है कि आपके साथ एक बार यह कविता और पढ़ लें। तो सारे बच्चे तैयार हैं झूला कविता सुनने के लिए? तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी कविता जिसका नाम है झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल उड़चल उड़चल उड़चल। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल उड़चल उड़चल उड़चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। कैसी लगी आपको कविता? इस कविता के साथ साथ आपको तमाम तरह के वे सारे झूले याद आ रहे होंगे जिन पर आप झूले हैं। कभी आपको झूलों पर बहुत मजा आया होगा तो कभी आपको झूलों पर बहुत डर भी लगा होगा कि कहीं हम नीचे न गिर जाएं। हमने अपने आसपास तरह तरह के झूले देखे हैं, है ना बच्चों? आपने ये झूले कहाँ कहाँ देखे हैं? मेले में, स्कूल में, पार्क में, बगीचे में और बहुत सारी जगह हम इन झूलों को देखते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम अपने घर आंगन बरामदे में ही झूला डाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम झूला झूलते हैं तो मन से एक गीत निकलता है और हम झूला झूलते झूलते वह गीत गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। बच्चों, झूले के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे गीत और कविताएं होंगी जो आपको याद होंगी। और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि झूले के आसपास कोई गीत कविता उन्हें याद है या नहीं। उन्हें याद होगा तो वे आपको सुना देंगे, आप सुन लीजिएगा तो आप हमें सुना दीजिएगा। तो बस यूं ही गीत गाने और गुनगुनाने का सिलसिला बना रहेगा। अच्छा बच्चों, आपने झूला कविता में बहुत सारे शब्दों पर ध्यान दिया था, याद है आपको? एक शब्द था झूला जिसमें दो आवाजें हमने सुनी थी, झ की और ल की। शाबाश। और हमने झ और ल से बनने वाले बहुत सारे शब्द भी तो सुने थे, आपने कहे थे और हमने सुने थे। तो इसी कविता में एक और शब्द हमारे पास है और वह है डाली। पेड़ के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग नाम होते हैं। पेड़ में तना होता है, तने में डालियां होती हैं और टहनी होती है और पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं और पेड़ की जड़ होती है। तो कुल मिलाकर किसी एक पेड़ के ये अलग अलग हिस्से होते हैं। कविता में उन दो चीजों के नाम आए हैं जो पेड़ के हिस्से हैं, आपको याद है? शाबाश, आपने कहा डाली और पत्ता, वेरी गुड। तो आपने डाली और पत्ता ये दो शब्द हमें बताए। आज हम डाली के आसपास बहुत सारी बातें करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेड़ की डालियां बहुत मजबूत होती हैं, हम उन्हें पकड़कर झूल सकते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी डाली उतनी मजबूत नहीं होती, बहुत कमजोर होती है, और अगर हम उनसे लटक गए तो धप से हम जमीन पर आ गिरेंगे। तो हमें पेड़ों पर चढ़ने का मजा लेना है तो एक ऐसा मजबूत पेड़ चुनना होगा जिसकी डालियां बहुत मजबूत होती हैं। आप बस डालियां पकड़ते पकड़ते पेड़ के ऊपरी हिस्से पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अकेले पेड़ पर नहीं चढ़ना, नीचे कोई बड़ा व्यक्ति हो उनकी देख रेख में ही हम पेड़ पर चढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि जब हम डाली शब्द कहते हैं तो इसमें कौन कौन सी दो आवाजें आपको सुनाई देती हैं? पहली आवाज है डा और दूसरी आवाज है ली, तो ये शब्द था डाली। लेकिन हम इन शब्दों को कभी भी बोलते समय तोड़ते नहीं हैं कि पहले हम बोलेंगे डा और फिर बोलेंगे ली, हम तो क्या शब्द कहते हैं, डाली। ठीक है, झूला झूल रही है डाली। अब इसमें जो पहली आवाज है वह आवाज है ड की। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें यह आवाज हमें सुनाई देती है और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी आवाज को हम बोलते हैं या इन आवाजों के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं। तो जिस माध्यम से आप हमें सुन पाते हैं और हम आपके मन की आवाज को सुन पाते हैं वह है रेडियो, और इस रेडियो में भी बीच की जो आवाज है वह है ड, रेडियो। आया समझ में?
2: खिलौने वाला आया, खिलौने ले लो, डुगडुगी ले लो, डमरू ले लो, गुड़िया की डोली ले लो।

0: कुछ डाकू आए,
1: डाकू डाकू
0: भारी डील डॉग। हाँ, करे डकैती बजा के डंका, सके न कोई बोल।

सभी छुपे डर डर के क्योंकि सभी तो थे डरपोक, डंडा मार के पैसा लूट रहे थे, सब डाकू बेरोक।

वेरी गुड। अब हम कुछ और शब्द कहेंगे जिनमें ड की आवाज है। आपको पहचानना है कि इसमें ड की आवाज शुरू में है या बीच में है या फिर आखिर में। तैयार हैं सारे बच्चे? ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है डाली। इसमें ड की आवाज है। हाँ है। कहाँ है? शुरू में। वेरी गुड। हमारा अगला शब्द है डोलना। डोलना, इसमें ड की आवाज है। हाँ है। कहाँ है? शुरू में। डोलना। अगला शब्द है डंठल। डंठल, कुछ मुश्किल हुई आवाज को पहचानने में? क्योंकि ड और ठ एक साथ आ रही हैं, तो डंठल में शुरू की आवाज क्या है? ठ है कि ड है? शाबाश, डंठल में शुरू की आवाज है ड। अब हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। जो शब्द मैं कहूंगी और जो शब्द आप सुनेंगे, अगर उस शब्द में ड की आवाज है, यह ड की आवाज शुरू में हो सकती है, बीच में हो सकती है और आखिर में हो सकती है, तो आपको शब्द में ड की आवाज को पहचानना है कि वह आवाज है या नहीं। अगर शब्द में ड की आवाज आपको सुनाई देती है तो आप हाँ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे जलेबी। और अगर शब्द में ड की आवाज कहीं भी नहीं है तो आप कहेंगे इमली। अब दोनों शब्द सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। भाई मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, और मैं ये शो खत्म करते ही तुरंत ही जाऊंगी और जलेबी और इमली खाने का इंतजाम करूंगी। मुझे अफसोस रहेगा कि आप बच्चे मेरे साथ नहीं है। तो क्या हुआ अगर आप मेरे साथ नहीं है? बस मैं आपका नाम ले लेकर आपके हिस्से की भी जलेबी और इमली खा लूंगी। तो तैयार है हम जलेबी और इमली के लिए? खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए। तो आइए हम सुनते हैं कुछ शब्द और आपको बताना है कि इसमें जलेबी है या इमली। अगर शब्द में ड की आवाज है तो आप कहेंगे जलेबी, और अगर शब्द में ड की आवाज नहीं है तो आप कहेंगे इमली। तैयार है? ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा डोरी। जलेबी, डोलना, जलेबी, धरती, इमली, गार्ड, जलेबी, डेरा, जलेबी, बादल, इमली, डोर, जलेबी, डोलना, जलेबी, डमरू, जलेबी, झूला, इमली, ऊपर, इमली, डेरा, जलेबी। शाबाश, आप भी यह खेल अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल सकते हैं, और कभी मौका मिला तो आप और हम मिलकर ये खेल खेलेंगे। आप चाहें तो जलेबी और इमली की जगह कोई और मजेदार शब्द खोजकर रख सकते हैं। शब्द खोजना आपका काम है, मैं बस थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। आप चाहें तो जलेबी की जगह यानी कि हाँ की जगह रख सकते हैं उठा, और ना की जगह रख सकते हैं शब्द पटक। तो शब्द क्या बनेगा? उठा पटक। और बहुत मजा आएगा अगर आप बार बार बहुत जल्दी जल्दी इन शब्दों को दोहराएंगे। जैसे डाली, उठा, धरती पटक, मजा आया? तो बस ऐसे ही एक शब्दों की सूची बना लीजिए। आपको अपने आसपास जो चीजें नजर आती हैं उनके नाम बोलते जाइए और आप उठा पटक करते जाइए। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि जब आपने जलेबी की बात शुरू की है तो आप इसकी एक कहानी भी सुना दीजिए। सारे बच्चे बहुत चतुर हो गए हैं। तो जलेबी के आसपास तो मेरे पास कोई कहानी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक कहानी है जिसका नाम है मिठाई। अब मिठाई में तो आप कुछ भी खा सकते हैं, चाहे लड्डू खाइए, जलेबी खाइए या फिर बर्फी खाइए। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मिठाई। पता है बच्चों,
एक दिन गधे का मन कुछ मीठा खाने को हुआ। गधे ने दोस्तों से कुछ मीठा खाने को मांगा। और पता है उनके दोस्त कौन कौन थे? उनके दोस्तों में शामिल थे हाथी, गिलहरी, चींटी, भालू, खरगोश। तो गधे के इतने सारे दोस्त थे। गधे को बारी बारी से सब दोस्तों ने कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए कहा, लेकिन देखते हैं कि किसने क्या मीठा खाने के लिए कहा। तो गधे ने अपने दोस्तों से कुछ मीठा खाने के लिए मांगा। तो पता है भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। गधे को शहद खाना अच्छा नहीं लगा था। खरगोश ने कहा गाजर खा लो। ना, गधे ने यह भी मना कर दिया। फिर पता है क्या हुआ? फिर चींटी ने कहा गधे भाई गुड़ खा लो, गुड़ तो बहुत मीठा होता है। गधे ने इसे भी मना कर दिया। फिर बारी आई हाथी की। पता है हाथी ने क्या कहा? हाथी ने कहा गधे महाराज आप गन्ना खा लो, गन्ना तो बहुत मीठा होता है। लेकिन गधे को यह बात भी पसंद नहीं आई और गधे ने गन्ना खाने से इनकार कर दिया। तो गिलहरी ने क्या कहा? गिलहरी ने कहा आम खा लो, आम तो बहुत मीठा होता है। गधे ने मना कर दिया। दरअसल गधे को किसी की भी कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही थी। उसका मन मीठा खाने को था, तो कोई गुड़ दे रहा था, तो कोई आम खाने के लिए बोल रहा था, कोई शहद खाने के लिए बोल रहा था, तो कोई गाजर खाने के लिए बोल रहा था। गधे का मन मीठा खाने को तो था, लेकिन उसका मन कुछ अलग मीठा खाने को था। लेकिन उसके दोस्त यह बात समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी वहां बिल्ली आई। बिल्ली बोली चलो हम हलवाई की दुकान पे चलते हैं। गधे को यह बात पसंद आ गई। उसने कहा हाँ हाँ हम सब हलवाई की दुकान पर चलते हैं। सारे जानवर हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। अब हलवाई इतने सारे जानवरों को देखकर डर गया। उसने सोचा कि अब ये मेरी दुकान पर हमला करेंगे। लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा आओ बर दोस्त, आई रिपीट, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा आओ दोस्तों आज कैसे रास्ता भूल गए। मुझे लगता है कि अभी अभी जो मैंने लड्डू बनाए हैं उसकी खुशबू से आप सभी मेरी दुकान पर आ गए। तो बिल्ली ने कहा नहीं हलवाई महाराज, हम तो गधे को लेकर आए हैं, गधे का मन कुछ मीठा खाने को है, इसलिए हम उसे आपकी दुकान पर ले आए। तो हलवाई ने कहा हाँ हाँ तो आप बैठिए, बताइए आपको क्या खाना है। तो गधे ने पूरी दुकान को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, और उसे दिखी क्या? जलेबी। उसने हलवाई से कहा कि मुझे तो बस ये जलेबी खानी है। तो हलवाई ने गधे के साथ साथ गधे के सभी दोस्तों के लिए जलेबी परोसी और सब ने मजे से जलेबी खाई। तो ये तो थी मिठाई कहानी। अब गधे को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा मीठा खाना है। देखिए भाई, गुड़ भी मीठा होता है, गन्ना भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है और गाजर भी मीठी होती है। लेकिन गधा ये बता ही नहीं पा रहा था कि उसका मन क्या मीठा खाने को हो रहा है। बस उसने हलवाई की दुकान पर अपनी मनपसंद जलेबी देखी तो उसने कहा मुझे तो जलेबी खानी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही काम करते होंगे अपने घर में। घर में दिन भर ये कहते होंगे कि मुझे कुछ चटपटा खाना है, मुझे कुछ मीठा खाना है, मुझे कुछ नमकीन खाना है, लेकिन वे सही सही नाम नहीं बता पाते कि उन्हें मीठे में क्या खाना है, चटपटे में क्या खाना है और नमकीन में क्या खाना है। बस यही कहते रहते हैं, कुछ मीठा, कुछ नमकीन, कुछ चटपटा।

0: आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई किस्सा है जिसमें मीठा खाने की बात है, जिसमें चटपटा खाने की बात है, या जिसमें नमकीन खाने की बात है और आप बता ही नहीं पा रहे, तो ऐसे मजेदार किस्से हमारे पास लिखकर जरूर भेजिएगा। हमें आपके किस्सों की प्रतीक्षा रहेगी। हमारा पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। हम आपके किस्सों की प्रतीक्षा करेंगे और साथ ही हम आपकी कहानी कविताओं की भी प्रतीक्षा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलती हूँ एक मजेदार कहानी और कविता के साथ। तब तक के लिए सब बच्चों को ढेर सारा प्यार, लाड़ और दुलार। नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए।

0: पॉइंटेड अफ मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा, मैं कहती हूँ

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: महावारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महावारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
2: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
1: याद रखें, महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
2: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
1: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है, और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महावारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
2: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से, मैं हूँ शील। और मेलों का जब जिक्र होता है तो लोग, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई मेला लगा रहता है। एक गाना भी है, मेला दिलों का आता है, यानी कि सच बात यह है कि मेले में लोग मिलते हैं, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानते हैं और लोग इधर से उधर आते हैं या इधर से उधर जाते हैं, यानी कि इस तरह से लोगों का आना जाना लगा रहता है। और जब एक छत के नीचे सरकार की भागीदारी होती है तो हमें नोएडा एक्सपो सेंटर पर इस तरह के मेले मिलते हैं, जो ग्रेटर नोएडा ट्रेड शो चल रहा है 25 से 29 सितंबर तक। मैं शील कमल, MA JMC स्टूडेंट, शारदा विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, और मुझे भी इस प्रोग्राम में भागीदारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैंने शिरकत की तो लोगों से जाना कि कल्चर के बारे में जाना, उनसे उनके थीम के बारे में जाना, उनके स्ट्रगल के बारे में, और जिस तरह के प्रोग्राम जो थीम है एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन, तो उस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए लोगों से बातें की। चलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं ऑन द ग्राउंड जाके क्या बातें की, आइए जानते हैं, सुनते हैं।
2: सर आपका नाम क्या हुआ?
3: सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार वर्मा है, मैं जिला हरदोई से हूँ, मतलब भेंद्र ब्लॉक है, ग्राम काशीपुर का।

0: रहने वाला हूँ।
1: और ये जो बिजनेस आप स्टार्ट किए, ये बिजनेस के पीछे कितने इयर्स का, कितने साल का सर्वाइवल रहा आपका? मतलब
0: ये सर हमारा तो मतलब लगा करके 25 साल हो रहे हैं इस समय।
1: हाँ।
0: लेकिन 2013 से हमने जो है इसका हमें समूह से मार्केट मिला।
1: 2013 से 18 तक आपने
0: 18 तक जो है हमने सीखने की प्रयास सीख, अलग अलग जिलों से इस बिजनेस को लाने के लिए मैंने प्रयास किया। 5-6 साल मुझे लग गए। 18 से हमारा जो है आगे टर्न ओवर बढ़ा। तब से दशरथ मेला होते होते सारी जगह, केरल है, केरल भी गए थे, और चेन्नई में हमारे जो है वेलूर में पड़ता था, वहाँ पे CM आए थे, जिनके साथ में हम लोगों ने जो हमारा प्रदर्शन वही हुआ, उनके साथ में फ़ोटो भी है। वहीं से मैं 2017 से आगे मैं बढ़ाऊँ। आज बढ़ते बढ़ते अब बहुत
1: स्टार्टिंग जो बिजनेस आप स्टार्ट किए थे, क्या आपका बजट था जो अभी?
0: मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपये मैंने लोन कराया था, मेरे पास कोई पैसा नहीं।
1: तो 25,000 के बिजनेस आप स्टार्ट किए थे, और आज के वक्त में आपके पास वो बिजनेस का टेन्योर कितना इंक्रीज हो गया है?
0: अब तो जो है साल का 10 से 15 लाख रुपए टर्नओवर है, जिसमें 3-4 लाख 5 लाख बच जाता है।
1: पहले आपका 25,000 वो आपका स्टार्टिंग पीरियड था।
0: धीरे धीरे उसको 25,000 से लोन किया, उसको अदा किया, उसके बाद भी 3.5 लाख हुआ, उसको भी अदा किया बैंक को, मैंने 3.5 लाख भी अदा किया। उसके बाद आगे
1: कितने टाइम से ये बिजनेस आप कर रहे हो?
0: ये सर हम 2005 से कर रहे हैं, लेकिन 2013 से मुझे प्लेटफॉर्म मिला, जो कि मुझे समूह बनाने का समूह मैंने बनाया 2013 में।
1: ये जो संस्थान है
0: जी,
1: इसके बारे में कौन और कैसे कहां से पता लगा?
0: ये सर हम लोगों को ब्लॉक स्तर से जानकारी मिली, ये सर 2013 में।
1: मीडियम क्या था, मतलब दोस्त से, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल मीडिया हैंडलिंग पेज या ग्रुप, कहाँ से जानकारी मिला यहाँ ये संस्थान के बारे में?
0: ये सर ब्लॉक स्तर से जो मेले लगते थे जिले में, मुझे बुलाया जाता था, जिले में जो प्रदर्शनी लगती थी उससे मुझे जानकारी मिली।
1: अच्छा।
0: DM के स्तर से, CDO के माध्यम से, NRLM की तरफ से, UPSRLM की तरफ से वहाँ अधिकारी आए थे, उन्होंने मिशन जो है उन्होंने जानकारी दी कि आप समूह बनाइए, आपको मेला भेजा जाएगा।
1: सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रोडक्ट क्या है, ये थोड़ा सा आप बताएंगे?
0: सर मेरा प्रोडक्ट जो है कि इस समय जो है सोलआउट होता है, जो समुद्र में कलकत्ता में पाया जाता है।
1: सोलआउट
0: हाँ। सोलआउट एक पौधा होता है सर,
1: समुद्र तल के नीचे पाया जाता है।
0: हाँ, नहीं, समुद्र में ही सर उगता है।
1: ओके।
0: पानी में उगता है वो, उसको हम लोग जो है कच्चा माल मंगाते हैं।
1: हाँ।
0: उसमें एक एक परत को, जैसे केला होता है ऐसे परत होते हैं उसमें।
1: कहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं आप लोग, मतलब ये जो प्रोडक्ट है?
0: सर प्रोडक्ट तो हम कलकत्ता से कच्चा माल मंगाते हैं, अपने जिला हरदोई बेंद्र ब्लॉक में मंगाते हैं, वहीं से सर बनता है, सब महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है,
1: वहाँ पे सारा फैक्ट्री स्टैब्लिश।
0: हाँ, वहीं पे सारी महिलाओं से तैयार के एक एक अलग अलग करके कटिंग कराई जाती है, फिर कटिंग करा के फिर उसको जो है एक एक करके बांधा जाता है, उसके बाद में फूल तैयार होते हैं। जब फूल तैयार होते हैं तो सर हम लोगों को मार्केट मिलती है, जो यहाँ से कमा के ले जाते हैं वो सारी महिलाओं को भी देते हैं, और उनका भी हेल्प करते हैं, और अपना परिवार चलता है।
1: अब तक क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं?
0: अब तक सर बहुत ही चैलेंज थे पहले, अब तो कुछ नहीं है। अब तो योगी सरकार, योगी मुख्यमंत्री जो है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आज उन्होंने जो मेले लगा रहे हैं वो सबसे बड़ी सुविधा हम लोगों को मिल रही है। ऐसे इंटरनेशनल शो में हम लोगों को मौका नहीं मिलता था।
1: कितने टीम है आप लोग?
0: हमारे सर समूह में 10 लोग हैं, बाकी अदरवाइज मैंने जुड़ना है अभी। और पहले 400 समूहों को तो मैंने निःशुल्क ट्रेनिंग दी है, जो कि टेडी बियर का, सारी कंपनियां हमारे यहाँ सभी घरों में पक्के मकान बन गए हैं, सारी महिलाओं के टेडी बियर से लोगों ने लखनऊ में मकान खरीद लिया, जिनका कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि 10-15 लाख का मकान खरीद पाएंगे।
1: काफी अद्भुत बात है
0: वो सर, आज 15-15 लाख रुपए के मकान लखनऊ में स्वयं खरीदे हैं,
1: अपनी अच्छा लग रहा है,
0: अपनी कंपनी बनाई है उन्होंने, और टेडी बियर के नाम से उन्होंने हर गले टेडी बियर बिक रहा है। पहले तो कुछ दिल्ली से माल आता था, हमने दिल्ली को रोक दिया, लखनऊ की सप्लाई हो रही है। लखनऊ
1: का नाम क्या हुआ
0: सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, मेरी पत्नी का नाम सीमा देवी जी।
1: तो आप दोनों साथ मिलकर,
0: दोनों लोग साथ करते हैं।
1: कितने वक्त से साथ मिलकर काम कर रहे हैं? कितने वक्त?
0: 2005 से साथ थे और साथ हैं, और ये कोशिश करते हैं कि हम इंडिया के विदेश लेवल में टॉप में आए, हमारा ये सपना है।
1: बिल्कुल सर,
0: ये हमारा सपना है।
1: और अभी तक आपने ऑनलाइन साइट को,
0: आज हमने यहीं पे बनाई है, ये हमें मौका मिला ना, इससे बहुत से पैसे लग जाते थे, ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं होती थी। अभी हमने आज ही रजिस्ट्रेशन कराया है, GST भी मेरे पास है,
1: समूह ऑनलाइन ऑनलाइन
0: हाँ ऑनलाइन की GST भी है, पैन कार्ड भी है।
1: ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अब आज के बाद आपका फ्लैश करना
0: मिलेगा, शुरू होने जा रहा है,
1: तो ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है मिलेगा आपको।
0: हाँ, ऑनलाइन सर प्रोजेक्ट हमारा जो है, अब हम आज ही रजिस्ट्रेशन कराया है, कल परसों चालू हो जाएगा, दिवाली के पहले लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी बजट इतना नहीं था हम लोगों के पास में, लेकिन अब
1: चलिए। धन्यवाद
0: जी सर।
1: आपका जो लागत है ये बनाने के बाद अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय को कितने डिवाइड आप मतलब परसेंटेज करते हो, कोई आइडिया?
2: परसेंटेज नहीं, जैसे हम फूल बनवाते हैं, स्टिक बनवाते हैं, तो हम अपने समूह के मेंबर्स हैं जिन उनको स्टिक के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से दे देते हैं,
1: दर्जन के हिसाब से।
2: और कुछ महिलाएं जैसे घंटे दो घंटे काम की, जैसे घर पे आके काम करी, तो हमारी दीदियां तो उनको ऐसे देते हैं जैसे दिन भर काम करने वाले को 450। और बाकी ऐसे आती हैं जो घंटे दो घंटे काम करती हैं, उनको उसी हिसाब से कम करके पैसे देते हैं हम अपनी सारी दीदी।
1: 450 पर डे के हिसाब से?
2: हाँ, पर डे के हिसाब से। और कमाने को ज़्यादा भी कमा लेते हैं, जैसे कि उन्होंने अपना रात दिन में मेहनत कर लिया, हमारे पास ज़्यादा काम कर लिया, वो तो पैसे जब कमाने लगता है इंसान की रुचि बढ़ती है, तो सोचता चलो दो घंटे और कर लें, फिर वो लोग ज़्यादा कर लेते हैं, 600-700 का भी काम कर लेते हैं। ऐसे वो तो अपनी कमाई के ऊपर होता है, मेहनत के ऊपर होता है, जितना मेहनत कर लो। तो कठिनाइयाँ तो सब बहुत आई। पहले हम होलसेल करते थे छोटा मोटा, होलसेल के साथ साथ फिर ऐसे अधिकारी आने लगे, ब्लॉक से टीम आई, उन्होंने समूह के लिए बहुत प्रेरित किया, तो समूह जानते ही नहीं थे हम क्या होता है। फिर बैंक में खाता खुलने में मैनेजर ने खाता तक नहीं खोला, बोला नहीं समूह बहुत ड्रामा होता है, मतलब बहुत संघर्ष किया। फिर बोले समूह कुछ नहीं होता है, नहीं खाता खोला। फिर डिस्ट्रिक्ट से अधिकारी आए थे हमारा खाता खुलवाने।
3: आंटी आपकी बहुत क्या कहना है, मतलब 3 साल बाद आप कैसे पढ़ाओगे?
2: मैम अभी तो हम इसको और अभी इंटरनेट वो मार्केटिंग से जुड़ना चाह रहे हैं,
1: वेबसाइट ऑनलाइन
2: बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आते हैं हम दिल्ली में, ये हमारा दूसरा टाइम है, तो यहाँ पे मतलब हमारे विदेश के भी कस्टमर पिछले आए थे, पहले हम तो 15-15 हज़ार का माल हमसे ख़रीदा था उन्होंने, तो डिमांड यहाँ हमारी बहुत है। एक दिल्ली में भी सोच रही हूँ मैं अपना रूम वूम ले के बड़ा सा एक सेटअप डाल।
1: अभी आप लोग मतलब कहाँ रहते हैं?
2: गांव अभी तक तो इधर तो होटल दे रखा है हम लोगों को रहने के लिए गवर्नमेंट ने, जो एस आर आलम
3: ने करवाया वही।
2: हाँ, एस आर आलम की तरफ से ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने।
3: आप यहीं रहते हैं हरदोई?
2: नहीं, हाँ हरदोई में ही।
3: और आंटी SSGR UP SRL लोगों ने आपको बढ़ाने में
2: मेले देते हैं, यही मेरा बढ़ावा है कि 5 दिन का मेला दिया, हमारा 50,000 1,00,000-1.5 लाख हो गया, तो ये सबसे बड़ा बढ़ावा है, यही है।
1: तो आप लोग तो रेंट पे किया?
2: नहीं, पे नहीं, कोई नहीं, निशुल्क।
1: अच्छा,
2: बल्कि हम यहाँ आए हैं तो मुझे खर्चा भी मिलेगा, खाने पीने का सारा कुछ देते हैं, और TADA मतलब जो हमारा लगेज लगा के भाड़ा लगता है वो भी हमें देती है गवर्नमेंट।
1: गवर्नमेंट के थ्रू डिसीजन, मेकिंग में मतलब क्या हेल्प मिला?
2: जैसे कि मतलब समूह को बढ़ावा इस टाइम मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से
3: बताते हैं वो लोग कैसे करना है।
2: हाँ बताते हैं, ये ईद की गाइडलाइन लखनऊ आती है, लखनऊ से फिर डिस्ट्रिक्ट पे आती है, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक आती है, तो वही हम लोग को बताते हैं कैसे करना है।
1: तो ये थी मेरे पास ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो हमने वहाँ के लोगों से बातें की, उनके बातों में वो महसूस किया कि उन्होंने कितने अब तक स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, अब तक उन्होंने क्या कुछ फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे, और गवर्नमेंट क्या कुछ मदद कर पा रही है।
4: नमस्कार, मैं हूँ गगन आपके साथ। अभी आप सुन रहे थे MJMC के बड़े होनहार स्टूडेंट शील कमल को, जो कि ऑन ग्राउंड गए नोएडा एक्सपो सेंटर में, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यहाँ पर 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक ट्रेड शो चल रहा है, जहाँ पर दूर दराज से लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें कहीं, अपने अपने टैलेंट को एक छत के नीचे उजागर किया, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन के माध्यम से। ये छोटा सा अनुभव बहुत बड़ा सीख देता है नए स्टूडेंट्स के लिए। कैसा लगा आपको ये छोटा सा प्रोग्राम? आप हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं 01204060205 पर कॉल कर। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं ले रहा हूं आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे स्टूडेंट्स को मौका देता है SSMFE। ऐसी अपडेट्स के लिए सुनते रहिए।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी मौसम की भविष्यवाणी। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना मौसम अच्छा कब और कैसे होता है। हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से, जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी और वर्षा इत्यादि। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी मौसम की भविष्य।

0: सृष्टि बेटा।
1: हाँ मम्मी।
0: ये दरवाजे खिड़की बंद कर देना, लगता है तूफान आने वाला है।
1: अच्छा अभी करती हूँ।
0: अरे मानव तू कहाँ चला आप?
1: तूफान को देखने।
0: अरे ये तूफान क्या कोई जानवर है जो तुझे दिखाई दे जाएगा? हवा तेज हो जाए तो तूफान का रूप ले लेती है, तब हवा की आवाज साए साए आती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डाले टूट जाती है। हाँ
2: हाँ मम्मी, हवा की आवाज तो आ रही है।
0: ए सृष्टि बेटा, जल्दी से बाहर सूख रहे कपड़े उतार ले वरना सारे के सारे उड़ जाएंगे। हाँ।
1: अच्छा मम्मी। दीदी बाहर का नजारा कैसा है? गिर आई काली घटा मतवारी, तो सावन की आई बाहर।
0: ए, क्या उठपटांग गा रहे हो तुम लोग? अभी तो मई का महीना है, सावन कहाँ से आ गया अभी?
2: पर मम्मी गाना तो ऐसा ही है, क्या केवल सावन में ही घटा आती है क्या?
3: हाँ मम्मी, एक गाना मैंने भी सुना है, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के।
2: मम्मी मेरे गाने में काली घटा आती है तो सावन आता है, और दीदी तुम्हारे गाने में काली घटा आती है तो ठंडी हवा आती है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि ठंडी हवा आई या नहीं।
0: अरे बुद्धू, हवा में उड़ जाएगा, बाहर जाएगा तो भीतर आके बैठ जा। और हाँ सृष्टि, तू जरा अपनी बुआ जी के घर फोन लगाना और फोन करके पूछ कि विवेक और तुम्हारे पापा अभी वहाँ से निकल पड़े या नहीं।
3: हाँ जी मम्मी।
0: और सुन, अगर अभी नहीं निकले ना तो कहना अभी वो वहीं रहे, बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, हो सकता है बारिश भी आ जाए।
3: हाँ हाँ ठीक है।
2: मम्मी बाहर से ठंडी हवा आ रही है, अब तो बारिश जरूर आएगी।
0: ओहो ये तो बेमौसम की बरसात है, अभी तो बरसात आने में देर है।
2: लो मम्मी, आप तो कह रही थी कि बरसात आने में देर है और बारिश होने भी लगी। मम्मी मैं बारिश में जाके नहा लूं?
0: मम्मी प्लीज ना। मम्मी जाना मानव, क्या करता है तू, तंग मत कर। अरे सृष्टि बाहर से कपड़े उतारेगी नहीं?
1: हाँ मम्मी।
0: आज मौसम को भी पता नहीं क्या हो गया, अच्छी खासी धूप निकली थी, अचानक आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी।
2: मम्मी मैं भी अखबार में देखता हूँ कि आज मौसम विभाग ने मौसम के बारे में क्या लिखा है।
0: अरे मौसम वालों की तो भली कही, जब वो कहते हैं आसमान साफ रहेगा तो बादल छा जाते हैं, जब वो कहते हैं बारिश होगी तो तेज गर्मी और धूप से हम बेहाल हो जाते हैं। अरे सृष्टि बेटा देखना दरवाजा खोल, कौन है?
2: हाँ जी मेरा दोस्त बबलू होगा, वो मुझे बारिश में नहाने के लिए बुलाने आया होगा।
3: तेरा अंदाजा हमेशा की तरह

0: आज भी गलत है मानव, ये तो पापा और विवेक भैया हैं।
1: अरे भाई किसका अंदाजा गलत है?
0: पापा मौसम विभाग का और मेरा।
2: फिर तो बिल्कुल ठीक है जी।
1: तो क्या भाई?
2: रुकिए मैं तौलिया लेकर आती हूँ, ये लीजिए।
3: मम्मी बाहर ना इतनी तेज आंधी थी, पहले तो हम एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। भाई पेड़ तो मानो चरमराने लगा, लगता था टूट कर गिर पड़ेगा। फिर हमने सोचा भाग लो, घर ही चलते हैं।
1: अरे अब अपनी मम्मी को कहानी सुनाते रहोगे या पहले एक कप गर्मा गर्म चाय पी लें? क्यों वसुधा, अब चलो, इस तूफान से मौसम कुछ तो ठंडा हुआ है ना।
2: सुनिए जी, दीदी के यहाँ वो सब तैयारियाँ ठीक चल रही है ना? शादी को तो कुछ ही दिन रह गए हैं।
3: पापा अगर शादी वाले दिन भी अचानक ऐसा मौसम हो गया तो?
1: अरे तो क्या, शामियाना वाटरप्रूफ लगाना पड़ेगा और क्या।
3: तब तो शामियाने का बजट और बढ़ जाएगा
0: और फूफा जी की जेब और हल्की हो जाएगी।
1: वैसे कहता तो ठीक है भाई, इस मौसम के मिजाज का हमारे मिजाज पर भी असर पड़ता है, यानी पड़ रहा है।
3: तभी तो हमारा दिल अब चाय और पकोड़े खाने को।
1: विवेक क्या बात, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मतलब मेरे पेट की बात छीन ली।
0: तो मम्मी कुछ बनाओ ना गर्मा गर्म।
2: मेरा भी दिल कर रहा है, चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। डब्बा और कढ़ाई तो देना।
0: क्या हो रहा है?
2: ये लो मम्मी।
0: चूल्हे पर रखी है कढ़ाई। मम्मी और दीदी को अब नहीं लग रहे हैं गर्मी के चाटे, तभी तो वो बना रही है गर्मा गर्म पराठे।
2: काफिया तो है तेरा एकदम ठीक, पर अंदाजा नहीं है तेरा सटीक।
0: क्यों, क्या पराठे नहीं बन रहे?
4: क्या कढ़ाई में कोई पराठे बनाता है बुद्धू, मैं तो आलू की कचौरियाँ बना रही हूँ।
2: मानव तू जरूर मौसम वैज्ञानिक बनेगा।
3: अरे भाई कौन मौसम वैज्ञानिक बनेगा?
2: मानव।
3: क्यों?
2: क्योंकि इसका अंदाजा मौसम वैज्ञानिकों की तरह अक्सर गलत होता है।
4: मुझे भी ऐसे ही लगता है, चूल्हे पर कढ़ाई रखी है फिर भी कहता है पराठे बना रही हूँ।
3: अरे भाई इसमें मौसम वैज्ञानिकों का क्या दोष, मानव ने सभी बातों का अवलोकन गौर से नहीं किया और निष्कर्ष निकाल लिया तो अंदाजा तो गलत होगा ही ना।
4: ये गलतियाँ ना बाद में निकालना, लो पहले गर्म कचौरियाँ खाओ।
3: हाँ
0: भैया मुझे भी दो।
3: लेना मानव। अच्छा आजा मानव, पापा के साथ बैठ कर खाएंगे। मम्मी सृष्टि आप लोग भी जल्दी बनाकर आ जाओ।
1: मानव खाता क्यों नहीं, एक कचौरी हाथ में लेकर क्या घुमा रहा है?
3: पापा मुझे पूरा यकीन है इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है।
1: हाँ हो सकता है।
0: भैया मैं सोच रहा हूँ कि ये आलू की कचौरी का आकार अगर 2.5 गुना बढ़ जाए तो क्या ये पराठा नहीं हो जाएगा?
1: पराठा या कचौड़ी? अरे पहले तू खा ले मानव, फिर बता कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। खा ले, खा ले, पहले खा ले।
2: अरे मानव तू खाता क्यों नहीं रे? ये लो और कचौरियाँ।
1: अरे भाई ये तो कचौड़ी और पराठे के चक्कर में पड़ा है।
4: क्या चक्कर है भाई?
0: मम्मी अभी आप कह रही थी ना कि जब हवा की गति तेज हो जाती है तो आंधी तूफान बन जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कचौरी 2.5 गुना बढ़ जाए तो पराठा नहीं बन जाएगी।
4: नहीं कचौरी कचौरी है और पराठा पराठा, क्योंकि दोनों को बनाने का ढंग अलग है और दोनों का स्वाद अलग है।
3: मानव तेरे दिमाग में क्या है साफ साफ बता देना, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं।
0: भैया आप तो रहने ही दो, मम्मी अगली बार जब बारिश होगी ना तो आप पराठे बनाना और वो भी आलू के।
4: बना दूंगी पराठे।
0: तो अगली बारिश कब होगी और कब मुझे पराठे मिलेंगे?
2: भैया बताओ ना अगली बारिश कब होगी?
1: विवेक मानव मजाक मजाक में तुमसे पूछ रहा है कि आने वाले दिनों के मौसम का अंदाजा कैसे लगा?
2: हाँ पापा ये क्या, हम सभी आने वाले मौसम का हाल जानना चाहते हैं, क्योंकि मौसम का हर समय हमारी हर चीज पर कुछ ना कुछ असर जो होता है।
4: विवेक लगता है तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, सृष्टि भी कुछ गंभीर दिखाई दे रही है।
1: अरे क्यों ना वसुधा, मौसम और हमारा हर समय हर पल का वास्ता जो है, अगर आज हमें मौसम का पूर्वानुमान होता तो शायद हम घर से बाहर ही ना जाते, बाहर ना जाते तो भीगते नहीं
4: है। और भीगते नहीं तो गर्मा गर्म कचौरियाँ और गर्म चाय नहीं मिलती।
1: ये बात भी सही।
3: देख मारो तू जानना चाहता है ना, तो आज का अखबार उठा और मौसम वाला कॉलम देख और देख उसमें क्या लिखा है।
0: अच्छा भैया अभी लाता
1: हूँ।
0: भैया इसमें तो कुछ आंकड़े लिखे हैं और एक मानचित्र भी है और लिखा है कि मौसम में बदलाव नहीं आंकड़े हैं अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान और अपेक्षित आर्द्रता।
3: मानव मौसम को समझना तथा आने वाले समय के मौसम का पूर्वानुमान लगाना आज एक पूर्ण विज्ञान है जिसे अंग्रेजी में मीटरोलॉजी यानी मौसम विज्ञान कहते हैं और उससे जुड़े वैज्ञानिकों को मीटरोलॉजिस्ट यानी मौसम विज्ञानी।
0: अच्छा भैया एक बात बताओ, जब मौसम विभाग नहीं था और मौसम वैज्ञानिक भी नहीं थे तो लोग मौसम का अंदाजा कैसे लगाते थे?
5: गुड क्वेश्चन।
4: अरे मानव हमारे यहाँ कितनी ऐसी कहावतें मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जो मौसम से संबंधित हैं। हमारी दादी उसी से अंदाजा लगाती थी।
2: हाँ मम्मी आपने एक दिन बताया था जब चिड़िया रेत में नहाए या चींटियां अपने अंडों को लेकर बाहर निकलने लगे तो समझो बारिश का मौसम निकट है।
3: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि, बिल्कुल ठीक। हमारे पूर्वज आकाश के रंग, हवा की दिशा, आकाश में बादलों की स्थिति और रंग देखकर मौसम की भविष्यवाणी करते थे। इस ज्ञान को लोगों ने कहावतों और मुहावरों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया।
5: जैसे मैंने तुम तक पहुंचाया।
0: तो क्या वो अनुमान ठीक होते थे?
3: कभी सही तो कभी गलत।
0: ऐसा क्यों?
3: तुम जानते ही हो मानव कि हमारे आसपास वायुमंडल है, उसमें जो बदलाव होते हैं वही हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं।
2: और मैं ये भी जानती हूँ कि मौसम संबंधी प्रक्रिया केवल स्ट्रेटोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में ही होती है।
0: दीदी तब तो हमें स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ही रहना चाहिए, वहाँ मौसम हमें कभी परेशान नहीं करेगा।
2: अरे बुद्धू तब सांस कैसे लेगा तू, वहाँ इतनी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी?
3: हमारा वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है।
0: पर भैया मैंने तो सुना है कि धरती का वायुमंडल कई चादरों का बना हुआ है और हर चादर अलग अलग है, जैसे मेरे पलंग की चादर लाल तो दीदी की नीली।
3: हाँ मानो कुछ ऐसा ही समझो, पर हर चादर के गुण अलग अलग होते हैं।
0: ऐसा क्यों भैया?
3: मानव इसके लिए हमें गैसों के कुछ विशेष गुणों को समझना पड़ेगा।
2: जैसे गैसें दबाव डालती हैं, गर्म होकर फैलती हैं तो उनका घनत्व कम हो जाता है और वो ऊपर उठती हैं।
3: बिल्कुल ठीक है सृष्टि, ठीक उसी प्रकार वायुमंडल की निचली परत जो धरती के संपर्क में आती है वो गर्म हो जाती है और उसके अणु एक दूसरे को धकेलते हैं, इससे वो फैल जाते हैं और तब उनका घनत्व कम हो जाता है और तब वो परतें हल्की हो जाती हैं और तब उनके द्वारा डाले जाने वाला दबाव भी कम हो जाता है।
0: दबाव कम होने से क्या होगा?
2: तब तो आसपास की ठंडी हवा गर्म वायु को धकेलती होगी।
3: बिल्कुल ठीक सोचा सृष्टि, और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है
2: और उसके स्थान पर ठंडी हवा आ जाती होगी।
0: दबाव कम तो ठंडी हवा यानी सुहाना मौसम।
3: अरे वाह मानव, ऐसा ही कुछ कुछ वैज्ञानिक भी करते हैं, वो पूर्वानुमान कई कारकों के आधार पर लगाते हैं
2: और वो कारक हैं तापमान, हवा का दाब, दिशा तथा आर्द्रता यानी नमी।
0: पर भैया ये नमी कहाँ से आती है?
3: अरे मानव धरती के तिहाई भाग में पानी ही तो है, सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर वायुमंडल में पहुंचता है।
0: अच्छा अब मैं समझ गया।
3: और मानव जानते हो आज हमारे पास इन सभी कारकों को नापने के उपकरण है जैसे थर्मोमीटर, एरोमीटर, अनीमोमीटर, यानी आंकड़े जितने सही और सटीक होंगे हमारे अनुमान उतने ही सही होंगे।
0: तो क्या हमारे मौसम वैज्ञानिक सही और सटीक आंकड़े इकट्ठे नहीं करते तो उनके अनुमान ठीक नहीं होते?
3: मानव इस सवाल का जवाब देना तो मुश्किल है।
5: अरे भाई कौन से सवाल का जवाब मुश्किल है,
3: आप ही बता दो।
2: अरे पापा याद आया, आपके मित्र है ना डॉक्टर कार। वो भी तो मौसम वैज्ञानिक है।
0: वही मौसम भवन वाले ना दीदी?
2: हाँ हाँ वही मानव। अब पापा आप उनको फोन करो ना, हम उनसे मिलना चाहते हैं।
3: हाँ हाँ पापा, मैंने सुना है अब मौसम विभाग में एक नया सुपर कंप्यूटर आया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ।
5: तुम लोग जाना चाहते हो?
2: हाँ पापा।
5: अरे तो मैं अभी फोन करके उससे कल शाम के लिए तुम सबके मिलने का समय फिक्स कर देता हूँ।

0: देख ये रहा मौसम केंद्र, और वो देख डॉक्टर कार हमारा इंतजार भी कर रहे हैं।
1: अरे आ जाओ बच्चों, कैसे हो विवेक, कैसे हो मानव, कैसे हो सृष्टि?
2: नमस्ते अंकल।
1: नमस्ते नमस्ते, आओ
3: दीदी। ये मौसम भवन है?
1: हाँ भाई, यही मौसम भवन है और ये हमारा दफ्तर है। आओ आओ भीतर चलें।
3: अरे दीदी वो देखो वहाँ वो दो लोग ना गुब्बारे उड़ा रहे हैं, कितना बड़ा गुब्बारा है, कितना मजा आ रहा होगा ना इनको।
1: अरे भाई मानव, ये मजे के लिए नहीं है, ये तो उसे ऊपर के वायुमंडल का हालचाल जानने के लिए उड़ा रहे हैं।
3: ऊपर के वातावरण का हालचाल?
1: हाँ मानव, ये मौसम केंद्र है, हम यहाँ वायुमंडल से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करते हैं।
0: अंकल इन गुब्बारों में क्या है?
1: विवेक इनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं, जिनसे हम ऊपरी वायुमंडल का तापमान, दबाव, हवा की दिशा और नमी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते हैं। हमारे देश में मौसम संबंधी आंकड़े 550 से अधिक केंद्रों पर इकट्ठा किए जाते हैं।
0: अच्छा,
3: तो क्या हर केंद्र से गुब्बारे भी छोड़े जाते हैं?
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा केवल 36 केंद्रों से दिन में दो बार किया जाता है। विश्व के अन्य देशों में भी ऐसे केंद्र हैं, जिनसे हम आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं।
3: अंकल उस बाग में जो यंत्र लगा है वो रेन गॉज यानी वर्षा मापक यंत्र है ना?
1: बिल्कुल सही सृष्टि, और ये यहाँ बैरोमीटर है वायु के दाब के लिए, और ये हाइग्रोमीटर हवा में नमी के लिए,
3: और ये है थर्मामीटर तापमान नापने के लिए।
0: अंकल एनीमोमीटर भी तो होगा हवा की गति नापने के लिए?
1: हाँ हाँ विवेक, वो देखो वो रहा, और ये जो जोकर की टोपी जैसा ये है ना, ये वायु दिशा सूचक है।
3: तो आप यहाँ केवल आंकड़े इकट्ठा करते हैं?
1: हाँ मानव, हमारे पास मौसम संबंधी पिछले 100 वर्षों से अधिक के आंकड़े हैं।
3: पर अंकल आप इन आंकड़ों का करते क्या हो?
1: अरे मानव यही तो हमारा कच्चा माल है मौसम का पूर्वानुमान लगाने का।
3: कच्चा माल?
1: बिल्कुल भाई, मुझे आपके पिताजी ने बताया था कि आप लोग कल बेमौसम की बरसात से परेशान हो गए थे, और आज मौसम केंद्र में ये जानने आए हैं कि आने वाले मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है।
3: हाँ अंकल।
1: तो चलो फिर भीतर मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ पर डॉक्टर प्रशांत माली भी आपसे मिलने को उत्सुक हैं।
3: चलो
0: चलो चलो,
1: आओ बच्चों आओ। ये हैं डॉक्टर प्रशांत, और डॉक्टर प्रशांत ये मेरे मित्र सूर्य प्रकाश जी के बच्चे हैं। ये है विवेक, ये सृष्टि, और ये मानव।
3: नमस्ते अंकल।
4: नमस्ते नमस्ते भाई। भाई मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं।
1: वैसे बच्चों एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मौसम के पूर्वानुमान लगाने का तरीका आज भी लगभग वैसा ही है जैसा कि पहले था।
4: हाँ, आज केवल अंतर इतना है कि हमारे पास आंकड़े एकत्र करने के सही उपकरण व तकनीक है, जिससे पूर्वानुमान अधिक सटीक प्राप्त होते हैं।
1: पर मौसम का पूर्वानुमान लगाना आज भी लगभग टेढ़ी खीर है, क्योंकि मौसम को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले सभी कारक क्या हैं और वो आपस में कैसे और क्या क्रियाएं और अभिक्रियाएं करते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी अभी हमारे पास नहीं।
0: तो अंकल जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जाएगी और हमारी तकनीकें सुधरती जाएंगी, हमारे पूर्वानुमान सटीक होते जाएंगे, है ना?
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक। जैसे प्राचीन काल से मध्य काल तक मौसम के पूर्वानुमान के लिए लोग संतों और महात्माओं से पूछते थे, क्योंकि मौसम का नियंत्रण व उसमें आपस में होने वाली क्रियाओं से वे अनजान थे।
3: और आज वही कार्य मौसम वैज्ञानिक करते हैं।
1: हाँ मानव, परंतु आज हम मौसम का पूर्वानुमान वैज्ञानिक तरीके से लगाते हैं, हम भौतिकी व रसायन विज्ञान के कई सिद्धांतों का भी उपयोग करते हैं।
4: और बच्चों मौसम को समझने के लिए भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करने वाले पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे एडमंड हेली।
0: अंकल वही हेली जिन्होंने उस धूमकेतु की खोज की थी जो हर 86 वर्षों में पृथ्वी के निकट आता है?
4: हाँ विवेक वही हेली, और पता है वो न्यूटन के भी अच्छे मित्र थे।
1: भाई बच्चों जैसे जैसे वायुमंडल के बारे में हमारी जानकारी बढ़ रही है, हमारे तरीकों में भी बदलाव आता जा रहा है।
0: तभी अंकल आज हम मौसम के आंकड़े न केवल पृथ्वी की सतह से बल्कि वायुमंडल के भिन्न भिन्न स्तरों से भी लेते हैं।
4: और आंकड़ों के लिए हम समुद्री जहाजों, वायुयानों और रॉकेटों का भी उपयोग करते हैं।
3: लेकिन अंकल पृथ्वी का वायुमंडल तो एक है, वो तो देश की राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानता। मुझे लगता है मौसम का सही पूर्वानुमान हम तभी लगा सकते हैं जब हमें समुचित वायुमंडल के आंकड़े प्राप्त हों।
1: बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। असल में हमारी ये समस्या आज दूर संवेदी तकनीक यानी रिमोट सेंसिंग द्वारा हल हो गई है। आज कई उपग्रह जिनमें पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय उपग्रह और जियोस्टेशनरी यानी भूस्थिर उपग्रह शामिल हैं, उनसे हमें पृथ्वी के एक विशाल क्षेत्र के आंकड़े प्राप्त होते हैं।
0: अच्छा
3: अंकल, आपकी टेबल पे ये इतने सारे मानचित्र, ये क्या है? हाँ अंकल, ऐसे मानचित्र तो मौसम का हाल बताने वाले कार्यक्रम में अक्सर दिखाई देते हैं।
1: मानव और सृष्टि, ये सिनॉप्टिक मानचित्र हैं। दिन के एक निश्चित समय में विभिन्न केंद्रों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और वो एक विशेष केंद्र को भेज दिए जाते हैं।
4: फिर वहाँ पर उनको मानचित्र पर दर्शाया जाता है। भारत में 550 केंद्रों पर आंकड़े एकत्र होते हैं।
0: अच्छा, तब तो अंकल जैसे ही एक विशेष समय पर लिए गए आंकड़ों को मानचित्र पर दर्शाया जाता होगा, तुरंत हमें पूरे देश के मौसम का पता चल जाता होगा।
1: बिल्कुल। इतना ही नहीं, इन आंकड़ों के गहन अवलोकन तथा विश्लेषण से पिछले आंकड़ों व अनुभवों के आधार पर आने वाले मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। इन आंकड़ों को मानचित्र में मानक संकेतों द्वारा दिखाया जाता है।
3: ये मानक कौन निर्धारित करता है?
4: ये मानक निर्धारित करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही संगठन आंकड़े एकत्र करने के उपकरणों व तरीकों आदि के मानक निर्धारित करता है।
0: अच्छा अंकल, जब इन सिनॉप्टिक मानचित्रों का विश्लेषण किया जाता है तो उससे हमें पूरे वायुमंडल का हाल तो मिल जाता है, पर आने वाले मौसम का पूर्वानुमान तो आकलन करने वाले वैज्ञानिकों के पूर्व अनुभव और उनकी कुशलता पर ही निर्भर करता होगा। उन्हें तो बहुत सारे सांख्यिकीय सूत्रों और समीकरणों को हल करना पड़ता होगा।
3: भैया, तब तो वो व्यक्ति गणित में बहुत होशियार होगा, है ना?
1: भाई, ये आंकड़े इतने अधिक होते हैं कि कई लोग लगातार दिन रात काम करें तो भी इनके सही नतीजे निकाल पाना संभव नहीं होगा।
3: तभी आपको सुपर कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है।
1: तुमने बिल्कुल सही कहा सृष्टि।
0: अंकल, क्या आज भी मौसम का पूर्वानुमान लगाना वैज्ञानिकों के कौशल और अनुभव पर ही निर्भर करता है?
4: नहीं भाई, आज तो मौसम का पूर्वानुमान लगाने के दो मुख्य तरीके हैं।
3: अंकल, पहला तो शायद वही यानी जलवायु के कारकों, पिछले अनुभवों पर आधारित अध्ययन और उसका सांख्यिकीय विश्लेषण। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल यानी सांख्यिकीय मॉडलों द्वारा किया जाता है, है ना?
1: शाबाश सृष्टि। और दूसरा है वायुमंडल के सामान्य संचरण मॉडल्स।
3: ये क्या है अंकल?
1: भाई देखो, हमारा ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और ये भौतिकी के सभी नियमों का पालन करता है, जैसे गति के नियम, ऊर्जा व द्रव्य के संरक्षण आदि के सिद्धांत।
0: अंकल, कहीं आप गणितीय मॉडल की बात तो नहीं कर रहे जो वायुमंडल में घट रही सभी प्राकृतिक घटनाओं को आधार मानकर तैयार किए जाते हैं?
1: बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक समझे विवेक। इसे अंग्रेजी में न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन विधि कहा जाता है।
3: अच्छा।
4: या यूं कहें कि ये मॉडल मुख्यतः वायुमंडल के व्यवहार से संबंधित नियमों और अभिक्रियाओं का एक समूह है।
1: देखो भाई, इन सभी सिद्धांतों और उनकी आपसी परस्पर क्रियाओं व संबंधों को गणितीय सूत्रों और समीकरणों में बदल दिया जाता है, फिर विभिन्न कारकों का मान रखकर उनको सुलझाया जाता है। जैसे पहले आंकड़े क्या थे और अभी के क्या हैं और आने वाले समय में क्या होंगे आदि। इन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आने वाले समय में वायुमंडल कैसे आचरण करेगा।
3: तब तो मेरे पास भी अगर सभी आंकड़े हो तो इस मॉडल के आधार पर और सुपर कंप्यूटर की सहायता से मैं भी मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता हूँ।
1: मानव, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वायुमंडल एक गतिशील इकाई है और फिर वायुमंडल को प्रभावित करने वाले सभी कारकों और उनकी आपसी प्रक्रिया का हमें पूरी तरह ज्ञान भी नहीं है।
4: दूसरे, हमारे पूर्वानुमान लगाने के सभी मॉडल कई मान्यताओं पर आधारित हैं। जैसे किसी कारक और उसके प्रभाव की गणना करके जो गुणांक निकला है वो सार्थक होगा, परंतु वायुमंडल गतिशील इकाई है, उसमें कब क्या किस कारण से बदलाव आ जाए क्या पता।
0: अंकल, तब तो ये कार्य बहुत कठिन होता होगा।
4: हाँ विवेक, परंतु इन मॉडलों से लघु अवधि के यानी आने वाले 48 घंटों के मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है वो लगभग सही होता है।
3: यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा और वायुमंडल कैसे आचरण करेगा उसी के अनुपात में आने वाले पूर्वानुमान से ठीक ना होने की संभावना बढ़ती जाएगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि। आज मौसम वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक जटिल गतिशील इकाई वाले वायुमंडल को सही रूप में कैसे समझा जाए।
4: और तभी तो इन मॉडलों के आधार पर प्राप्त अगले 48 घंटों से अधिक के पूर्व सूचना को हम अनुमान कहते हैं।
0: अच्छा, तब तो अंकल मौसम की मध्यम अवधि जिसमें 3 हफ्ते की सूचना दी जाती है उसका पूर्वानुमान सटीकता से लगाना तो अब भी कठिन काम है।
1: बिल्कुल सही कहा विवेक, लघु अवधि के पूर्वानुमान विस्तार से बनाए जाते हैं, वैसे मध्यम अवधि में पूर्वानुमान नहीं बताए जाते। ये काम आज भी अंधेरी रात में काले कौवे को पकड़ने के समान है।

0: हमारे देश में इस दीर्घ अवधि के मौसम का पूर्वानुमान मतलब कि आने वाले मॉनसून की भविष्यवाणी की जाती है।
1: बिल्कुल सही विवेक। सन 1986 से हर वर्ष मॉनसून का दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाया जाता है और खुशी की बात यह है कि अधिकतर ये परिणाम खरे उतरते हैं। इसके लिए हम आज एक 16 पैरामीटरों पर आधारित एक नए मॉडल का उपयोग कर रहे हैं।
2: अच्छा। और इस मॉडल के अनुसार मानसून के पूर्वानुमान लगभग ठीक ही साबित हुए हैं।
3: अच्छा अंकल, आपका काम सचमुच बहुत कठिन है। मैं न केवल हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व के मौसम वैज्ञानिकों को सलाम करती हूँ जो दिन रात मेहनत करके हमें आने वाले मौसम के बारे में जानकारी देते हैं।
0: हाँ सृष्टि, सोचो ये मौसम की जानकारी हमारे देश के तटीय क्षेत्रों के लिए कितनी आवश्यक है।
4: तो क्या आने वाले समुद्री तूफान या चक्रवात की जानकारी भी हमारा मौसम विभाग ही देता है?
1: बिल्कुल मानव बेटा।
4: तब तो मैं भी अपने सभी वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ।
5: और मैं भी।
1: वाह क्या बात है।
6: रसोई की खिड़की से कितनी अच्छी सुगंध आ रही है।
4: ये तो इमली की महक है। और हाँ, कल रात को तो मम्मी ने चावल और उड़द की दाल भिगोई थी, तब तो जरूर आज सांबर और डोसा बन रहा है।
7: हाँ भाई, डोसा ही बन रहा है।
6: देख मानव, आज तेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला।
3: आज इसका अनुमान बिल्कुल ठीक इसलिए रहा क्योंकि इसने अच्छी तरह सारी जानकारियों को तोला और परखा।
8: अरे भाई, किसका अनुमान सही है? मेरा पूर्वानुमान है कि तुम सब के सब भूखे हो।
4: आपको कैसे पता?
7: ये तो साफ साफ तुम्हारे चेहरों पर लिखा है।
4: मम्मी, तो क्या आप भी चेहरे पढ़कर अनुमान लगा सकती हो?
7: हाँ बच्चों, मौसम का अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकती, पर तुम्हारे चेहरे देखकर तुम्हारी भूख का अंदाजा जरूर लगा सकती हूँ।
9: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम की भविष्यवाणी।
10: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
11: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
2: प्लीज।
1: थैंक यू।
3: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: अलिका शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
3: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
2: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
3: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
2: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
4: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
3: कल नहीं, अभी।
4: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: महावारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महावारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
1: यदि महावारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेटकर उसे पेट पर रखें।
0: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती हैं जो जुड़ने पर ही समझ में आती हैं। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब होटल मॉल स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सब जानते हैं कि हमारे नाम में ही लोगों की आशा छुपी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम विजिट के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास होम विजिट में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान मौजूद हो और साथ ही ये होम विजिट फॉर्म भी हो। नमस्ते अम्मा। घर पहुंचने पर सबसे मुस्कुरा कर मिले और वहां के वातावरण को जांच के अनुकूल बनाएं। बच्चे को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। घर वालों को भी हाथ धोने का फायदा बताएं। बच्चे की पीलिया की जांच करें और साथ ही आंख, मुंह, नाल और त्वचा की भी जांच करें। बच्चे का तापमान थर्मामीटर से मापें। कहीं बच्चे का तापमान ज्यादा या कम तो नहीं। बच्चे का वजन करें। हर विजिट के दौरान वजन में बढ़ोतरी का हिसाब रखें। माँ को स्तनपान का सही तरीका और फायदे बताएं। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दें। होम विजिट फॉर्म में लिखे सभी सवालों को माँ और परिवार से पूछें और जानकारी दर्ज करते हुए उचित सलाह दें। बच्चे का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ लगे तो उसे तुरंत 102 या फिर 108 बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। आखिरी में अपनी अगली होम विजिट की तारीख परिवार वालों को बताएं। अपना फोन नंबर दंपत्ति से अवश्य साझा करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने हर होम विजिट को सफल बनाइए, क्योंकि हमारी हर विजिट से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है, इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका पेट

0: आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिंदगी म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रुहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नबी, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM। जिंदगी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार, ऑल यू सुरुशादा 90.8 FM इंकलाबी जिद्दी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
7: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: So, where are you? The world is here at Sharda University.
8: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूं रणविजय. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

ओरिजिनल ट्रैक म्यूजिक डायरेक्टर भीम्स सेसिरोलियो सिंगर्स पवन सिंह एंड जॉनिता गांधी लिरिक्स वायु श्रीवास्तव

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Don't say I'm a lot of money, my dad! My gun is still working! I'll get these bastards!

0: फौजी हैं, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स।
1: और तो उसे भी मिला था अब जाने के लिए कमबख्त माना नहीं, लड़ता रहा।
2: एक भी देख, एक इंच पीछे नहीं हटेगा।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: ठान लो ये बात,
1: 5 खाद्य समूहों का मेल
2: कर देगा सभी बीमारियों को फेल।
1: जो ना खिलाया बच्चे को पौष्टिक आहार,
2: बच्चा हो सकता है बीमार।
1: शिशु को 2 से 3 चम्मच मसला हुआ खाना खिलाएं।
2: शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएं।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: mixing in the house.
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। सुनो शारदा।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: सुनो शारदा
6: 90.8 FM। राम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
7: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
8: गगन खोखरी फतेह।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Namaste class. TB को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी

0: छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।